0: मेछी भाजी अब मैं जाऊँ, चन्नो जी के बगैर मेरा दिल उदास हो गया है, टीड़ी टी करके।
1: हाँ हाँ पिंके जरूर, मेछी भाजी मैं भी जाऊँ। हाँ हाँ सोहन तुम भी जाओ।
0: अच्छा भाजी चंगा भाई, सोहन जकाम के गोल्डन मरीज, ओके बाय।
1: नमस्ते मेछी भाजी, बाय पिंके, बाय सोहन, बाय पिंके। श्रोताओ आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पॉप टाइम।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेज।
4: म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेज। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
2: साथियों कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस में मैं आपकी दोस्त अनामिका का आप सभी को नमस्कार करती हूं। फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद के गीत, जिनकी फरमाइश आप हमें भेजते हैं हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसकी फरमाइश हम तक आई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव, साइना, निवान शर्मा की। ये सुनना चाहते हैं फिल्म नागिन से गीत।

अगली फरमाइश हम तक आई है सेक्टर 12A पंचकुला से मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद रफीद, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अली हुसैन की। ये सुनना चाहते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं से गीत। गायक है लता मंगेशकर।

अगली गीत सुनने की फरमाइश हम तक आई है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव शर्मा की। ये सुनना चाहते हैं फिल्म शोर से गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जानवर से मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे सुनना चाहा है सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक, ढींगरा और सेक्टर 11 पंचकुला से अतुल शर्मा ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म स्वयंवर से, जिसके गायक हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। इसकी फरमाइश

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। अगली फरमाइश आई है फिल्म सिलसिला से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की। ये गीत सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अगली फरमाइश आई है फिल्म सौदागर के गीत के लिए, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। इसे सुनना चाहते हैं नंद किशोर गर्ग, कलावती केशव, रवि कल्पना और परिवार के अन्य सदस्य।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। अगली फरमाइश आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर निर्मला नहावकर विशाल नहावकर सोपान और नारायण इंगले के द्वारा। ये सुनना चाहते हैं राजा और रंक फिल्म का ये गीत।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: अगली फरमाइश आई है हमारे पास सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाठी, स्नेह गुलाठी, हिमांशु गुलाठी, देवांशु गुलाठी, चित्रांशु और दीपांशु गुलाठी की। ये सुनना चाहते हैं फिल्म चितचोर का ये गीत।

अगली फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। सुनना चाहते हैं फिल्म याराना का ये गीत। गायक हैं किशोर कुमार, संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार अनजान। फरमाइश दी है टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। इसके अलावा कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने।

आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत। इसी गीत को सुनना चाहा था नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण कीर्तनपुरी गोस्वामी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने।

0: इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस को समाप्त करने की अपनी दोस्त अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: जहां रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई।

0: 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं

0: उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए सुनिए प्रोग्राम यादों की महफिल। ये प्रोग्राम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
3: का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम

आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज महान अभिनेता सदाबहार देव आनंद की याद का दिन है। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। एवरग्रीन देव आनंद के फिल्मी सफर का आगाज हुआ था 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। तो आइए यादों की महफिल में आज याद करते हैं हिंदी फिल्मों में एक लंबी और सफल यात्रा तय करने वाले पद्मभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता निर्देशक हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन यानी कि सदाबहार निर्माता निर्देशक हीरो और पहले रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को सुनकर उनके गीत। तो साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है गाइड।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में स्वागत है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: काला बाजार, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

साथियों, लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है 3 देवियां।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है जय देव का और फिल्म का नाम है हम दोनों।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने याद किया सदाबहार रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

कुछ फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर कार्यक्रम रहेगा सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित होगा दोपहर 2:00।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे सुनिए 2:30 पर। दोपहर 3 बजे सुनिए कार्यक्रम मनचाहे गीत। 3:30 पर आप सुनेंगे नाट्य तरंग में नाटक बांदी।

शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए बॉम्बे टॉकीज में गायिका सुषमा श्रेष्ठ पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, आज सुनिए इसका दूसरा भाग। शाम 5:20 पर समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का। शाम 5:30 पर सुन सकते हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज का कार्यक्रम जानवी जिंदल पर केंद्रित रहेगा।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे विशेष जयमाला कार्यक्रम पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की। कुछ पंजाबी गीत आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, फिर रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनेंगे सुनो कहानी में रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी, आज इसका दूसरा भाग है। कार्यक्रम चित्रलोक होगा 8:15 पर। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का कार्यक्रम पार्श्व गायक हेमंत कुमार पर केंद्रित रहेगा। और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हमारे केंद्र से और 1:10 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में यह बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है।

0: दूसरी विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए और तीसरी जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पात्र बीपीएल महिलाओं एवं किशोरियों को गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए लाभार्थियों का उचित पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों का पूरा नाम, फोन नंबर तथा आवश्यक विवरण दर्ज किया जाए और वितरण का उचित रिकॉर्ड रखा जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्रों तथा संबंधित वितरण केंद्रों के माध्यम से स्कूलों में भी इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। शहरी क्षेत्रों में भी जन औषधि केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने आवश्यकता अनुसार डिस्पेंसिंग मशीनें लगाने के निर्देश भी दिए और कहा कि महिलाओं एवं किशोरियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले सभी उत्पाद गुणवत्ता के मानकों पर खरे होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने किशोर न्याय कोष को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज चंडीगढ़ में एक बैठक में अधिकारियों को इसके अलावा यौन अपराधों तथा पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ितों को तत्काल सामाजिक एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये से 50,000 रुपये करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को निर्धारित प्रावधानों के तहत समय पर सहायता मिले, इसके लिए पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कल मेरा युवा भारत चंडीगढ़ इकाई ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त विषय पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। चंडीगढ़ में सेक्टर 11 के पोस्ट ग्रेजुएट सरकारी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में लगभग 50 स्वयंसेवकों ने भाग लिया और एक नशा मुक्त युवा समाज के महत्व तथा विकसित एवं सशक्त भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपनी रचनात्मक सोच एवं विचारों को पोस्टरों के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों एवं अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण किया। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्पर्धा का स्वर्ण पदक जापान के यामाशिता ने जीता। इन खेलों में अहिरवाल के रेवाड़ी जिले के ग्राम सुलखा के शूटर कमलजीत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में झज्जर की शूटर सुरुचि के साथ मिलकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त आदेश के बाद CM विंडो पर मिली शिकायतों के निवारण में तेजी आई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल में CM विंडो पर मिली 283,000 शिकायतों में से 234,000 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: अनि जेम्स अफ इन्डिया च्यालेन्ज
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं आंधी फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और गीतकार हैं गुलजार, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अगला गीत फिल्म गाइड से, आवाज है मोहम्मद रफी की, संगीत दिया है SD बर्मन ने और बोल हैं शैलेंद्र के।

अंत में सुनिए फिल्म कल आज और कल से। ये गीत बोल हैं हसरत जयपुरी के, आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत को समाप्त करने की अपनी दोस्त गीतिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें।

0: नजदीकी शाखा से SBI द बैंकर टू एवरी इंडियन. नियम और शर्तें लागू.
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं. आइए सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर. ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे.
2: गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं. वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा.
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया. उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया.
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का. 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन.
1: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जो जवाब लिखे वो हमने देख लिए हैं और उन्हें अभी पढ़ देते हैं. इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरूपा रॉय, नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, रूना ईरानी, जलाल आगा. और इस फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झलाई और निर्माता थे जे ओम प्रकाश. अब पढ़ते हैं आपके कुछ और कमेंट्स. आज की इबारत मिलन और बिछड़ने की उम्मीदों को लेकर घड़ी गई है और इस दृष्टिकोण से आज की ये इबारत सराहनीय है. एक साथी ने लिखा है कि प्रेम में बस एक बात समझी जा सकती है कि सरलता ही प्रेम है और ये सरलता ही दो लोगों को जोड़े रखती है. अगर आपके मन में सरलता नहीं है तो बिछड़ना तय है. अगला मैसेज है कि जहाँ एक पक्ष रोक रहा है और दूसरा पक्ष उसे समझा रहा है और विश्वास दिला रहा है, ये इबारत प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहाँ मिलन की खुशी और बिछड़ने का डर साथ साथ चलते हैं. प्यार में मिलन के हसीन पल वाकई बहुत ख़ास, गहरे और जीवन भर के लिए यादगार पल होते हैं. जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हसीन पल एक ऐसी अनमोल पूंजी बन जाते हैं जिन्हें इंसान मुश्किल वक्त में भी याद करके मुस्कुरा उठता है. एक साथी ने लिखा है, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो हमारी तरफ से आपको भी. अगला एक मैसेज है कि आज तो सिर्फ सुनने का मन है, कोई कमेंट नहीं. हमें ये गाना याद आ रहा है, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए. एक साथी ने लिखा है, कभी कभी प्यार का सबसे सुंदर हिस्सा मिलना नहीं बल्कि बिछड़ने के बाद भी किसी का दिल में बने रहना होता है. कुछ लोग जिंदगी में पल भर के लिए आते हैं मगर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं. मिलन चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है और फिर बिछड़न आंखों में नमी. मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे. एक साथी ने लिखा है, मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे. अगला मैसेज है कि उम्र के इस मोड़ पर बिछड़े कॉलेज मित्र जब सालाना यूनियन मीटिंग में मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो आयु बढ़ जाती है. हमारे एक साथी ने एक लिस्ट भेज दी है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, आ जा रे प्यार पुकारे नैना तो रो रो, बाय बाय मिस गुड नाइट कल फिर मिलेंगे, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ये गीत लिखकर इन्होंने भेजे हैं. एक साथी ने लिखा है, आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, परिवार के संग हूँ.

एक साथी ने लिखा है कि घर में बहु बेटी जब जाती है तो जत्रा निकाला जाता है, उसका उसका कुछ ले जाने वाला सामान एक अच्छे समय पर घर से बाहर कहीं पर रख दिया जाता है और जाते समय उसे भी ले लिया जाता है। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था। बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, कारण इसके बाद संपर्क

छः साल का बच्चा था, तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था। बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया कारण इसके बाद संपर्क टूट गया, पर मैंने FB पर उसे ढूंढ निकाला और एक दो बार अच्छी तरह उनसे बात भी हुई, पर बाद में उनसे हमारा संपर्क टूट गया।

साथियों, अमेरिकी साहित्य के एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की अंग्रेजी कहानी द प्रिंस एंड द पाउपर पर आधारित ये एक नैतिक सीख देने वाली फिल्म है राजा और रंक। एक गरीब लड़का और एक राजकुमार जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। राजकुमार को बाहर की दुनिया की गरीबी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जबकि रंग को राजमहल के कड़े नियम और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। अदला बदली की ये कहानी हमें इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है। तो बताइए हमें कि ये राजा और रंग की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता कौन थे, और खलनायक और साथी कलाकारों के नाम भी लिख दें।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू। घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
3: आवाज की दुनिया के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफर, तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं। ये शुभ मंगल यात्रा का धार्मिक प्रावधान है। एक साथी ने लिखा है कि मेरा प्यारा पालतू लैब्राडोर बीटल नाम था उसका, 2 दिन पहले वो गुजर गया हमेशा के लिए मुझसे। उन्होंने लिखा है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है। एक साथी ने लिखा है कि फूल खिले हैं तो झड़ेंगे ही, बादल हैं तो खिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं शम्सुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों पर, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर।
3: साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वी राज कपूर, बिस्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इससे जुड़ा गुजर

ताती भजन है एकला जा आव्या मनवा एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला परिवार बना उसी से बना ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती जैसा साथी साथ हो तब जीवन का सफर सुरीला मधुर बन जाता है। ये अगला कमेंट है कि अक्सर देखा गया है कि प्यार में कई प्रेमियों के दिल टूट जाते हैं पर उन्हें जीवन में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी जिसमें सफ़र के दौरान रोमांस कॉमेडी और विदेशी नज़ारों की यात्रा को दिखाया गया है। आखिर में सब साजिशें बेनकाब होती हैं और कहानी का सुखांत तो होता है। साथियों हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर की नायिका कौन थी जिनके माता पिता भी महान कलाकार हैं और साथ में इस फिल्म के खलनायक का भी नाम लिख दे। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं इसमें किसकी आवाज़ें हैं वो भी हमें बताएं और साथ में इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लिख दें।

साथियों आपके जवाब हमें मिल गए हैं। राज कपूर, राजश्री, प्राण, ओम प्रकाश, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अमिता, असला, अचला, सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड और अभिनेत्री राजश्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माता जी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफ़र के बन के हम सफ़र, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

मित्रों, जीवन में कई मोड़ आते हैं। खुशियों में हम खुश होते हैं, दर्द में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कभी तो ये राहें आसान लगती हैं, लेकिन कभी कभी ये राहें इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम अपना धैर्य खो देते हैं। कठिन समय शायद हमारी परीक्षाओं का समय होता है, जिनमें कभी तो हम धैर्य रखते हैं और कभी टूट भी जाते हैं। जिंदगी के ताने बाने में धैर्य या सहनशीलता को धारण करना आत्म संयम को बढ़ाता है। धैर्य मुश्किल हालात में हमारे लिए किसी ढाल की तरह होता है और हम मुश्किल वक्त से पार पाने में समर्थ हो जाते हैं। जिंदगी फिर किसी प्यार के नगमे की तरह लगने लगती है।

स्वभाववश हम विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कभी अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस करते हैं कि लगता है जिंदगी यहीं थम गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसमान के पंछियों की उड़ान जो नाजुक पंखों के भरोसे ही तय होती है, उन नदियों की धाराओं को देखिए जो रास्ते के पत्थरों को भी पार कर आगे निकल जाती है, वो माली जो फूलों और फलों के आने का इंतजार बड़ी धैर्यता पूर्वक करता है, चातक पक्षी स्वाति की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, धरती धैर्य धारण कर अच्छे ऋतु चक्र में फसलों से लहलहा जाती है, तो क्यों ना हम अपने मन को इन पलों में धीर धरना सिखाएं।

समय एक सा नहीं होता, बदलता रहता है। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह होती है। एक नया सवेरा जागता है, उम्मीद की नई किरणें हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देती हैं। हौसला जो हमने अपने दिल को बंधाया था, इस मुश्किल वक्त में संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा एक तरह से हमें दे जाता है। मुश्किल वक्त में न सिर्फ हम धैर्य रखें, बल्कि औरों को भी धैर्य बंधाएं। मुश्किल घड़ियां जरूर गुजर जाएंगी और ये पल खुशियों में बदल जाएंगे।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक
1: अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए।
0: अब समाचार विस्तार से।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सी

0: कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के तीन अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी।

0: आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
1: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है पतीता।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज है हेमंत कुमार की, फिल्म का नाम है 16 साल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बात एक रात की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत हेमंत कुमार की आवाज में। तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जाल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
4: जरा नजरों से कह...

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, आकाश कुमार और शिल्पा रानी, सुखजी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, विशाल, आरुषि, प्रियंका, ख्याति, शक्ति, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई और किशन लाल जी चौहान, रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि और शिवांग त्रिपाठी, मनु विजय मिश्रा, गोविंदा साहू, अमन पीए और गोविंद ओमर और अमरजीत सिंह सांगा, बेनीपट्टी मधु बनी बिहार से अरविंद कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, मनिया कुमारी और गुड़िया कुमारी, करीमनगर तेलंगाना से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय, साई किरण, शेखर श्रीनिवास और पन्ना वेंकटेश, एकलव्य नगर जिला रंगारेड्डी से सुषमा, बाबू अकेला और बिजली। तो लीजिए सुनिए।

अपनी पसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार।

3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक।

0: निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है उषा खन्ना की और फिल्म का नाम है साजन की सहेली। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी ख़त लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। ज़िला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक। तेलीपाड़ा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी, अनीता श्रीवास और छन्नूलाल श्रीवास। शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा। छत्तीसगढ़ बेमेतारा ज़िला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी। महामाया पाड़ा ग्राम दरचौरा से फिरंता साहू और दोरोलीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमारी साहू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, गराम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नौसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वत देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आप सभी दोस्तों की पसंद पर। पत्र लिखे हैं आपने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदा राज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।
1: मनचाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या करेंगे? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। लाहौल वाला
2: नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: अल्लाह मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार। ए मैं मर गई। अल्लाह
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी।
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नायाब बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से
2: सरकार।
1: अब जाती है के?
2: मुझे नहीं निकालिए सरकार।
1: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरी अच्छी।

0: सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
0: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
1: ओहो, कैसी बातें कर रही है हलीमा।
0: मैं आपकी बांधी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था, मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है, हम बांधी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा, तुम बांधी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, कहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
0: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
0: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं, अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब?
0: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रहे हैं।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
0: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है, 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं, ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे, हम प्यारी अम्मी से कहकर।
0: उनके हुक्म से तो नया बूबू ने मुझे भेजा है।
1: ये कैसे हो सकता है, प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
0: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
1: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
0: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बूबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
1: सरवरी को? ला हौल वला कुव्वत।
0: हाँ सरकार, बूबू मुझसे खफा नहीं, क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी, मुझे मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
1: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
0: नया बूबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
1: नहीं नहीं हलीमा छोड़ो।
0: मेरे नवाब।
1: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
0: छोटे सरकार।
1: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
0: या अल्लाह।
2: अरे भाई जहांगीर साहब और छमनिया, अरे भाई क्या हाल चाल है?
1: आपकी दुआ है अफजल भाई।
2: अम्मा यार, क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
1: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है, कहिए क्या काम है?
2: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अम्मा अम्मा, ये क्या किस्सा है?
1: कौन सा किस्सा?
2: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
1: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
2: वजह?
1: मैं इसे बदकारी समझता हूँ।
2: ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
1: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
2: अम्मा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
1: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
2: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है, किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागलखाने पहुंचा दिए जाओगे।
1: ये घर कुछ पागलखाने से कम है, जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे।
2: मैं हकीम साहब क़िबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
1: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
2: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
1: आप तशरीफ ले जाइए।
2: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
1: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
2: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छमन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं, बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले, मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलादे नरीना ना पैदा हुई।
1: औलाद नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
2: मगर बांदी से क्यों विदकते हो? शादी वक्त आएगा हो जाएगी।
1: और बांदी?
2: बांदी काम आएगी।
1: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगी।
2: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म और रिवाज को नहीं समझती हैं।
1: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना होगा?
2: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
1: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
2: अम्मा अजीब हवनक आदमी हो।
1: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे

0: मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
1: तो एक काम करो साहबजादे।
0: क्या?
1: जाते जाते मैं मिनहारन भी को भेजे देता हूं, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
0: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायब बुबू?
2: मुझे नायब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
0: हलीमा,
2: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती है।
0: नहीं हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई। हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
2: मेरे अच्छे नवाब।
0: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा, हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो। तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा, रहम करो हलीमा।
2: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल ऐसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
0: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
2: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
0: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
2: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज भी मुझसे नहीं निकालिएगा। याद नहीं सिकंदर नवाब ने अपनी निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
0: कौन सिकंदर नवाब? वो पगले चचा?
2: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
0: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
2: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मेराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
0: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
2: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
0: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
2: मगर हूँ आपकी।
0: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
2: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
0: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितने सर्द हो रहे हैं।
2: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
0: हलीमा हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे। तुम हमारी दुल्हन हो, खुदा और रसूल खुदा की कसम, तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा हलीमा।
3: हर बात की एक हद होती है नायाब। लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई, जी का आजार हो गई, अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं।
4: ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
3: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम।
4: हाँ बेगम, भलाई नाखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
3: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
4: आ जाएगी, आप देखते जाइए। जी से उतरी के साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
3: तो फिर निगौड़ी को गाँव भिजवा दो।
0: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
2: मेरा जी चाह रहा है।
0: हमें छोड़कर चली जाओगी?
2: जल्दी आ जाऊंगी।
0: कितनी जल्दी?
2: थोड़े दिनों बाद।
0: कितने होते हैं थोड़े दिन?
2: यही कुछ 6-7 महीने।
0: 6-7 महीने?
2: आहिस्ता बोलो।
0: हम मर जाएंगे।
2: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर मेरे नौशा, बुरी फाल मुझसे न निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
0: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा? जान, ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
2: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती, सनोबर की और बात थी, बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय, मैं मर जाऊं, ये क्या कह रहे?

0: बच्चा?
1: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
0: मेरे सर की कसम खा,
1: नहीं अल्लाह नहीं।
0: हलीमा तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
1: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
0: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा
1: जी।
0: बच्चा कब तक होगा?
1: 6 महीने बाद।
0: अगर रोएगा तो हम पाजी को बहुत डांटेंगे।
1: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
0: तुम गांव नहीं जाओगी।
1: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
0: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
1: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
0: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
1: सरकार।
0: शट अप।
2: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
3: ये लीजिए।
2: ये शह वो मारा।
0: भाईजान मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
3: अम्मा इस वक्त बड़े जोर की बाजी जमी है खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
0: भाईजान
3: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
2: शह हजमत नवाब शह।
0: प्लीज भाईजान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
3: ओफो कहो क्या कहना चाहते हो।
0: जरा मैं
3: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
0: भाईजान
3: अम्मा कह भी चुको।
0: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
2: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
0: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
2: सरवरी जालिम पटाखा है पटाखा, है क्या उठान है अम्मा, उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
0: अफजल भाई
3: अच्छा जाने दो, आगे चलो।
0: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा
3: मियां, ये महल का पुराना दस्तूर है।
0: वो गाय भैंस नहीं, वो
2: कहो कहो शर्मा क्यों गए?
0: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
3: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो, ला हौल वला कुव्वत।
2: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता, प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
0: भाई जान,
2: और फिर सितंबर के महीने में हुर्मा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
0: मैं हुर्मा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
3: बहुत खूब, वो कब?
0: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
3: और निकाह? काजी कौन था?
0: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
2: वल्ला तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
3: जाओ मियां क्यों वक्त जाया कर रहे हो। हाँ भाई अफजल भाई, दूसरी बाजी जमाए, ला हौल वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ।
2: जमन मियां तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
3: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहां से।
0: भाई जान मैं
3: बदतमीज।
2: अरे, अरे अरे ये क्या करते हो हशमत मियां? क्या
3: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसे हुई?
2: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
4: बेगम साहिबा एक बात कहूं? कह भी चुको क्या कह रही हो। नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है, उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी।
5: अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए।
4: फरागत पाकर विलायत जाने के इरादा है?
5: हाँ हाँ, खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
4: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संतू न ले जाएंगी?
5: अब दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी। खैर से वो मेरे पास ही रहेगा,
4: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी।
5: अये है दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारों पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई।
4: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं, मुंह जली की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं।
5: ए बुआ तो कुछ मुंह से फूटो तो।
4: नजम बिटिया और हलीमा का बस 2-4 दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
5: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
4: जो हुकुम सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी, यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
5: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी,
4: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ साहबजादे भी जिद के पूरे हैं, बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
5: कभी सोचती हूँ नायाब तुम न होती तो।
4: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।

0: हलीमा
1: जी सरकार।
0: कौन सर्वरी
1: जी?
0: तुम यहाँ क्या कर रही है?
1: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है? कुर्ते में लगा दूँ?
0: चल भाग यहाँ से और हलीमा को भेज।
1: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हम्माम में पानी तैयार है।
0: हलीमा कहाँ है?
1: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हम्माम में लगा दिया है।
0: ओहो, हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
1: अल्लाह, हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
0: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी। चल भाग।
1: हम नहीं जाते।
0: कहाँ है हलीमा बता।
1: उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए। हाय मैं मर गई। हाय मेरी मैया।
0: बता, नहीं बताएगी?
1: बताती हूँ।
0: बोल।
1: वो उधर शागिर्द पेशे में।
0: क्यों?
1: वो उसका जी अच्छा नहीं है।
0: ओह,
1: इन्हें खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
0: फरखुंदा बाजी।
2: अरे छमन मिया, क्या पैदल भागे चले आ रहे?
0: साइकिल पर। फरखुंदा बाजी वो मर रही है।
2: अहे कौन?
0: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोली भको मत।
2: ठहरो।
0: वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
2: नहीं मिया, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी। मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं।
1: बुबू, नया बुबू, अस्पताल की लॉरी आई है।
3: अस्पताल की लॉरी? दीवानी हुई है ना मुराद?
1: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
3: ये क्या किस्सा है नायर?
1: लारी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियां भी हैं।
3: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत।
1: लीजिए वो आ गई। तस्लीम मानी जान।
3: जियो, ये मुझे अस्पताल की लारी क्यों आई है?
1: हलीमा को लेने।
3: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब?
1: इस वक्त बहस ना कीजिए, पहलोठी का बच्चा है। अगर
3: तुम्हारी बला से, तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
1: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
3: हद से न बढ़ो फरखुंदा।
1: मुझे मजबूर ना कीजिए मुमानी जान।
3: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
3: पुलिस?
1: या अल्लाह,
3: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
1: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
0: नहीं, मैं उठा लूंगा।
1: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
4: आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
0: चुप रहो बेवकूफ।
1: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो।
0: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है।
5: ये क्या हो रहा है?
1: आदा मामू जान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
5: हमसे पूछे बगैर?
0: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
5: मर जाने दो
0: अब्बा हुजूर।
5: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
0: नहीं,
5: तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे गुस्ताखी कर रहे हो बेशर्म?
0: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
5: क्या बकते हो मर्दूद? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
0: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
5: तुम्हारे इतने दिमाग?
1: कोश में आओ बेटे, मैं मुझे डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
0: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
1: अरे कहाँ जा रहा है छमन मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
0: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
1: ना जाओ मेरे लाल।
0: खुदा।
1: ना जाओ मेरे लाल छमन।
5: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे।
1: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं उसे जानती हूँ ना मुराद, बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया। नहीं बुबू, कैसे हैं चमन मियां के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
3: मेरे कान नखा, मुझे छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
1: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है?
3: अरे बेगम, बस जान का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत।
1: घर बार कैसा है?
3: अरे बेगम कुर्बान जाऊं, ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है, बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी के उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया।

0: मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छम्मन ने वहां पलंग पर लेटे थे। एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
1: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
2: नाट्य तरंग में अभी आप इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हिमांगनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताती है
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन
1: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया, इतने जी बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा? क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब।
1: हाँ।
0: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
1: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों

0: के सामने खड़ी हूं,
1: जी
0: मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर
1: काम
0: रही
1: कर
0: हूं?
1: रही।
0: ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं? जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था।
1: जी बिल्कुल।
0: अब उनके पास गई, वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका, और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स
1: जी
0: नहीं कहती,
1: जी
0: वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब, तो ये है, वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे, जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया
1: जी
0: करते थे,
1: जी
0: जागीरदार जी बोले, साहब जी ये आ ये इतनी छोटी, आ जा बेटा, गाना कौन लिखेगा? तो मौसी लिखती थी।
1: अच्छा
0: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
1: जी
0: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया
1: अच्छा
0: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं? कहा नहीं मैं गाऊं। तो बोले गाओगी? कहा। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था, मुझे हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना था।
1: जी जी
0: तो मैंने कहा मैं गाऊं? तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया, अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले जागीरदार सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
1: बिल्कुल।
0: तो मौसी ने को पूछा, अब सीखती है? मौसी ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। इतना भी काफी था उनके
1: हाँ
0: लिए, इतना कहना ही
1: बहुत
0: काफी था।
1: बड़ी बात।
0: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम
1: कम है। जी
0: है ना।
1: जी जी
0: उनके साथ तो ये था मेरा, नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे
1: सीखा।
0: तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी,
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीज़ें सुनाना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
1: जी
0: तो हम गए, और वो भी टेनिस खेलने गए थे, वो दिलीप
1: अच्छा
0: साहब के साथ खेलते थे
1: हाँ
0: टेनिस।
1: हाँ
0: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने, उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें। पर इस बच्ची को 6 बजे मैंने शुरू किया,
1: 6 बजे
0: एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और, करते करते 10 बज गए,
1: रात की।
0: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले,
1: जी
0: मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइंस हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
1: अरे
0: तो
1: जी
0: अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाद पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती। फिर था हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी। इतना ही था बस
1: जी।

0: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत, उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट,
1: जी
0: अरुण,
1: जी
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे। तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
1: आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई, तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है? और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं बंदा की नहीं जी, 12 साल की थी। तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तो उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहां तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आरडी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ।
0: जी,
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत बहुत बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए जिसमें आपने अपनी आवाज
1: दी। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो मुझे पंचम दा ने सिखाया पता है, उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी, डैडी
1: शर्मिला हाँ। जी कैसे बोलती हैं
0: हाँ।
1: मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सब बोले यही चाहिए मुझे हाँ, आगे क्या है डैडी
0: हाँ।
1: मैं तो भूल ही गया मुझे वो चाहिए बहुत यादें आपने ताजा की
0: जी,
1: आज
0: जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी, कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है, फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
0: जी,
1: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी,
0: अच्छा
1: जी, मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी,
1: कोई भी गाना अच्छा, पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
0: अरे
1: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा, एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वही फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे, दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे,
0: अच्छा,
1: और फिर ओवर टाइम, तो वही सोए थे वो, उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: जी,
1: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
0: वो गाएगी,
1: हाँ बोलो गाएगी गाएगी पंचम, वो गाएगी गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी, तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी
0: जी,
1: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल सूट
0: करती है,
1: इस करके ये गाना मुझे मिला।
0: तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, बताइए तेरा मुझसे है पहले का नाता,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप ही का गाया हुआ सुन
1: जी जी

0: था मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी, जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता
1: कोई।
0: कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं लोगों ने, किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, ओ मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको

0: भुलाना तो वो ही रखवाला है, उसी को बुलाना तो आ जा। हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदा के, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं। देखिए,
1: जी
0: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर, उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो, कि तारा रा रा रा, ये हुआ खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये रा रा रा, और सॉफ्ट, उसी को बुलाना तो आ जा आ जा।
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये मैंने
1: ये
0: उनसे
1: आधार का
0: सीखा,
1: जी, ये पंचम धाम में ही ये गुण
0: ये
1: थे
0: उतार चढ़ाव
1: जी
0: डायनामिक समझे से
1: जी
0: कहते,
1: जी जी
0: कहाँ कितना आपको जोर देना
1: देना
0: है,
1: है।
0: कहाँ आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह
0: कहाँ आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है।
1: वाह
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के, पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
1: जी जी जी मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का
0: हाँ,
1: प्यार मिला, स्नेह मिला,
0: बहुत
1: उस
0: बहुत
1: छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल,
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: ये मेरा
1: जो
0: भाग्य ही है।
1: नसीब नहीं
0: हाँ हाँ
1: मिलता है, अच्छे
0: बिल्कुल,
1: अच्छों को नहीं मिला है।
0: नहीं
1: अभी
0: मिल,
1: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
0: ना ना
1: जिनको
0: ना,
1: हम उंगलियों पर

0: इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया, लता जी उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म थी,
1: है ना जी,
0: बांग्लादेश वॉर के ऊपर वो था, वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: वाह,
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ एक और मेरे दिल के करीब का गाना है,
1: बिल्कुल हमारे दिल के भी करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान है।
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल जी।
0: तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी कोल्हापुरी
1: ने।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहाँ प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए वो नागरा क्या बोलते है ना, नागरा वो लेकर आते थे। तो वहाँ एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया।
1: अच्छा।
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी,
1: नासिर हुसैन
0: जी, कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब क्या? नहीं, मैंने कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूँ और मैं लता जी के साथ गा रही हूँ,
1: सबसे बड़ी
0: वही मेरे लिए काफी।
1: जी, जी।
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की बारात निकली,
0: निकली है,
1: पर आपको गाना हाँ? होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी। यादों की बारात।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट पुश बैक पुश
1: जी
0: बैक,
1: जी
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचम दास से
1: जी
0: सी।
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा रा, आप समझे?
1: वो खुद भी ऐसे ही गाते
0: हाँ
1: थे
0: बिल्कुल
1: जी।
0: डा रा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ की उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात एनचंद्रा की फिल्म
1: धर्म कर्म भी था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मुकेश अंकल के साथ।
0: और एनचंद्रा की फिल्म अंकुश का

0: शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पागधरी के साथ गीत गाया है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया? इस गीत को गाना आसान नहीं था।
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे। फिर मैं गाती थी एक तो ना, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है। सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तो ना मिल

0: शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पागधरी के साथ
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया? इस गीत को गाना आसान नहीं था
1: मंदाकिनी जी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखे ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे। फिर मैं गाती थी एक तो ना, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, माफी चाहूंगी सारे।

0: चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हाँ, माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
1: जी,
0: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत अलग, एक बहुत ही अलग गेम है,
1: विधा है।
0: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है। लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में, मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा, माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है, क्या गाती है, कर दो ना, कर दो ना, अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया, तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए। तरम पम उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
1: जी
0: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
1: अरे
0: पर उनकी, उनका बड़प्पन देखिए। हाँ, हाँ। ये पहले भी एक बार मैं मुकेश, झट से बताती हूँ,
1: हाँ।
0: मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बापी दा की पहली फिल्म थी
1: जी,
0: नन्हा शिकारी।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो वो बापीदा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो, नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस, कि अब तो गदा पड़ी, लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे, हाँ, इवन हाँ, रिकॉर्डिंग्स में, वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही हैं आप।
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए,
1: क्या बात है।
0: वहां मैंने ये एक और, मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
1: ये नम्रता,
0: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
1: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हूँ उसको अप्रिशिएट करते हुए,
0: और वही तो, बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरम पम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
1: अरे
0: राज, बच्चा तरम पम बोलेगा और मैं बोलूं, उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो कह, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरम पम तरम पम, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
1: क्या
0: नहीं तुम्हारे अंतर में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस,
1: बिल्कुल,
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल, इसको इसको स्वीकार कर लेना,
0: ये ईमानदारी
1: जी
0: है
1: जी,
0: ना
1: जी,
0: ये सब मैंने सीखा मंदा के नीचे
1: जी,
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
1: जी,
0: क्यों, मैं समझती हूँ हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का
0: वो जो अंतरा है कि ना हो बस में तेरे कुछ भी माना।

0: दिन बिक जाएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल। ये हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये गाना बजाइए।
1: ये गाना हम बजाएंगे और हमारे श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं, जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर की मम्मी
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी। मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूँ, इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड वाला फिल्म्स आ गले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के

0: साथ काम
1: जी,
0: किया
1: जी
0: इतनी मतलब
1: बड़ी बात है और ताउम्र याद रहने वाली बात
0: और ये आखिरी गीत इतनी शक्ति हमने सोचा ही नहीं था। मंदाकिनी जी कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी मैं अगर मैं बोलूं आपको मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूं। देखिए मैंने सबकी जो करियर की जो शुरुआत हुई है काफी जैसे रमेश सिप्पी जी सलीम जावेद जी फिर एन चंद्रा जी
1: उनके शुरुआती दौर में
0: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस यस
1: आप हमारे लिए लकी हैं।
0: तो ये हमने सोचा ही नहीं
1: जी,
0: था
1: जी।
0: कि ये गाना एक दिन इस देश मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा।
1: बिल्कुल
0: है ना, आज देखिए मतलब क्या किस स्तर पे वो गाना पहुंच गया।
1: बिल्कुल और पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है उनके साथ गाना आपको मिला।
0: बिल्कुल और मैं मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज
1: वो वही थी,
0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस थी,
1: पुष्पा जी की आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं वो आप कीजिएगा जरूर कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क
1: जी, कीजिएगा जरूर है।
0: तब मैं आपको बताऊं
1: जी, मेरा ही सवाल है
0: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था और सब वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए,
0: बस वो गाना
1: जी, जी
0: वो बंद हुआ फिर सब बैठ गए चलो अब काम। तो वो बोले पता है ये मेरी दीदी ने तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे
1: जी,
0: बैंक में सिर्फ आइएगा तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया
1: जी।
0: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की दुनिया में हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं तो ये गाना नंबर वन पर होता
0: देखिए
1: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से, और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी कुलदीप सिंह जी अभिलाष जी तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ वो पहचान
1: वो स्थान
0: नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चले तो एक लंबा समय निकल जाएगा,
0: कितने गुणी बाप रे।
1: बिल्कुल
0: तो
1: चलिए ये गीत हम सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपने सुना कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए विविध भारती के अपने मुंबई केंद्र से रिले किया। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे श्रोताओं, आज शाम 6:45 पर प्रसारित करेंगे आपके लिए प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया, जीवन एक अनमोल उपहार। तो आज का विषय है अंगदान महान दान, तो ज़रूर सुनिएगा। इस समय श्रोताओं शाम के 5 बजने वाले हैं और बस कुछ ही देर में हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। पंजाब पुलिस ने आज फिरोजपुर में पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन और हथियार गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। फिरोजपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भूपिंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि पंजाब पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें एक चेकिंग प्वाइंट पर रोका गया था। मामले की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने

0: समुद्र में ऊंचे लहरें उठने की आशंका के कारण आज से 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के नागरिकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केओंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहाँ चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदिशा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। शाम की 5:05 हुए हैं। कुछ फिल्मी गीत सुनवाएंगे अब हम आपको। पहले ये संदेश सुन लीजिए।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: तो संदेश सुना हमारी श्रोताओं ने, अब सुनिए कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, बीते दौर के जाने माने सदाबहार हर दिल अजीज देवानंद साहब का आज जन्म दिवस है। आज उन्हीं की बात करते हैं और उन्हीं के गीत सुनवाते हैं आपको। आपको बता दें, 1943 में लाहौर से मुंबई आए थे देव साहब, और कभी क्लर्की की उन्होंने तो कभी बरतानी सेना के सेंसर दफ्तर में नौकरी भी की। हसरत हमेशा अभिनेता बनने की रही, तो फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। पहली फिल्म आई हम एक हैं, पहली फिल्म से ही सबकी नज़र में आ गए थे। अपने अनोखे अभिनय से, अपने स्टाइल से, संवाद बोलने की जो उनकी अदा थी, उनकी जो चाल ढाल थी, इन सबके चलते देवानंद साहब सिने स्क्रीन के साथ साथ दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाए रहे। आज भी वो हम सबके चहेते कलाकार हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया गया ये पहला गीत।

0: शो तो एक बड़ी ही स्टाइलिश कलाकार होने के अलावा
1: देवानंद को हिंदी फिल्मों में एक विजनरी के रूप में भी माना जाता रहा है। बड़ी दूर की सोचते थे, रिस्क लेते हुए फिल्में बनाते थे। बहुत सारी फिल्मों का निर्माण भी किया उन्होंने और निर्देशन भी। टैक्सी ड्राइवर, काला बाजार, हम दोनों, ज्वेल थीफ, जोशीला जैसी मेन स्ट्रीम फिल्में की उन्होंने। कमर्शियल सिनेमा चुना उन्होंने तो वहीं पर गाइड और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी बहुत ही बोल्ड और अपने समय से आगे की सोच रखते हुए फिल्में भी बनाई। वैसे ही उन्हें अपने दिलकश अंदाज और चार्म के कारण भारत का ग्रेगरी पेक भी कहा गया। जिंदगी से रोमांस करने वाला ये अभिनेता बड़ा ही खुश दिल और जिंदा दिल व्यक्तित्व का मालिक था और बेहतरीन कलाकार तो वो थे ही, अदब नज़ाकत की मिसाल थे। सीने जगत के जो सितारे रहे देवानंद, उनका एक अलग सा ही जादू था जो आज भी यूं का तू ही बरकरार है।

दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि देवानंद साहब एक सदाबहार जाने माने और सफल अभिनेता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप ना जानते हों, तो वही हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं, देव साहब ने अशोक कुमार की किस्मत और अछूत कन्या फिल्में देखी और उन्हें देखकर ही अभिनेता बनने का फैसला ले लिया था। गुरुदत्त के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी उनकी। देव साहब किसी किस्म का नशा नहीं करते थे, महिलाओं की बहुत इज्जत किया करते। उनकी अभिनेत्रियां उन्हें जेंटलमैन कहकर पुकारती थी। 1970 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, द इविल विद इन। इस फिल्म में भी देव साहब ने काम किया था। अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर के बारे में तो आप जानती ही हैं, तो ये फिल्म ना सबसे पहले देव आनंद को ही ऑफर हुई थी। वैसे इस फिल्म को उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, चार्ली चैपलिन के बड़े फैन थे वो। स्विट्जरलैंड में चार्ली चैपलिन से उन्हें मिलने का मौका भी मिला था और जैकेट इकट्ठा किया करते थे। 800 जैकेट्स थी उनके पास। और महाबलेश्वर में एक होटल का कमरा नंबर 11 हमेशा उनके नाम पर ही रिजर्व रहता था। बातें तो और भी बहुत सारी हैं उनके बारे में, लेकिन वक्त थोड़ा है, तो चलिए सुनते हैं उन पर फिल्माया गया ये अगला गीत।

श्रोताओ, देवानंद साहब ने कम से कम 100 फिल्में की हैं अपने करियर में और पद्म भूषण से सम्मानित किए गए वो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो आज इस कार्यक्रम में हमने आपको उन्हीं पर फिल्माए गए गीत सुनवाए। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:20 हुए हैं। तो अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। दोस्तों, आज के समय में व्यस्त जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस लोगों की आदत बन चुकी है। बिना किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लिए लोग फार्मासिस्ट को समस्या के लक्षण बताकर दवाई ले लेते हैं। हालांकि ये आदत गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। आज हम इस लम्हे प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाइयों का सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। ड्राई कॉफ, टाइटनेस इन द चेस्ट, गले में दर्द और खराश के साथ कफ निकलने पर कफ सिरप लिया जाता है, लेकिन कफ सिरप के कारण सुस्ती, नौजिया, घबराहट, याददाश्त में कमी जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर के सलाह लिए कफ सिरप न लें। मामूली खांसी से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुकसान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए लैक्सेटिव मेडिसिन इस्तेमाल में लाया जाता है। साधारण तौर पर किसी भी डिलीवरी या सर्जरी के पहले पेट साफ करने के लिए ऐसी दवाई दी जाती है, लेकिन इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, लैक्सेटिव कोलाइटिस, लूज मोशन, किडनी में स्टोन और हार्ट की मसल्स में कमजोरी हो सकती है। आमतौर पर बुखार और किसी भी तरह के एलर्जी से होने वाली जुकाम की स्थिति में ऐसी दवाइयां दी जाती है जो बैक्टीरिया, फंगस और ऐसे ही अन्य परजीवियों को नष्ट करने का काम करती है। लेकिन इन दवाइयों के सेवन से त्वचा में एलर्जी, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से बिना सलाह लिए इन दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए। जोड़ों का दर्द होने पर या किसी दुर्घटना में चोट लगने पर लोग दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे में जी मचलना, गैस की समस्या, पेट दर्द और लूज मोशन आदि। इसके अलावा ऐसी दवाइयां लेकर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह लिए पेन किलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस आप घर पर बैठकर मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर की पर्ची के बिना सेल्फ मेडिकेशन काफी है तो आप गलत हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के कई नुकसान हैं, जिसका असर लंबे समय में जाहिर हो सकता है। बुनियादी तौर पर जब दवाइयां आपके शरीर में प्रवेश करती है तो तेजी से अवशोषित हो जाती है और प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हो सकता है कभी आपको राहत मिल जाए या बाद में साइड इफेक्ट जाहिर हो। खरीदी गई हुई दवाएं बहुत नशीले और खतरनाक हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेगुलर मिलने वाला कॉफ सिरप खासकर इलाज में बहुत मशहूर

है ऐसे कॉफ सिरप्स। इस्तेमाल करने पर मरीज नींद से भरा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग राहत के लिए ऐसे कॉफ सिरप ले लेते हैं। हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं जहां कॉफ सिरप लेकर लोग नींद में चले जाते हैं, और यह खासकर ड्राइवर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वर्तमान में यह सिरप डॉक्टर की सलाह पर बेचा जा रहा है। इसके विपरीत कई एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की पर्ची के साथ बेची जाती है। एंटीबायोटिक्स की खरीदारी डॉक्टर के सुझाव पर करनी चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसकी बिक्री को अपराध समझना चाहिए। कभी कभी लोग डॉक्टर के मशवरा के बिना पेन किलर को खरीद लेते हैं। शरीर में पहुंचने पर पेन किलर भविष्य में दर्द का कारण बन सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की खरीदना छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से सेल्फ मेडिकेशन के खतरे से लोगों को अवगत कराया जा सकता है। सबसे ज्यादा अहम है दुकानदार को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा की बिक्री रोकने के लिए शिक्षित किया जाए। पिछले सालों में लोगों के खान पान और हेल्थ केयर संबंधी आदतों में कई सारे बदलाव आए हैं। कोविड से बचाव में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों ने बिना डॉक्टर से बिना सलाह मशवरा किए इंटरनेट पर पढ़कर कई तरह के दवाइयों और मल्टीविटामिन का खुद से ही सेवन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें किडनी और लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही गलत आदत है जो इन दो अंगों को ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। तो जान ले कौन सी दवाइयों को ज्यादा सेवन से किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि लोग बीमारी के साथ साथ खुद से दवा लेना साइड इफेक्ट भी झेल रहे होते हैं। इन्हें बाद में गलती का एहसास होता है, पर कब तक बॉडी पर इसका असर पड़ चुका होता है। खुद से दवा लेने के खास पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। शर्म या लिहाज के चलते महिलाएं खुद से ही दवा ले लेती है, या परिवार को प्राथमिकता देने के चक्कर में वो अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं देती और खुद से इलाज शुरू कर देती है। ऐसी गलती न करें। कुछ लोग खुद से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर आपको बता दें कि इससे भी आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सप्लीमेंट्स का असर हर शरीर पर अलग ढंग से होता है। अगर सही तरीके की बात की जाए, सप्लीमेंट्स लेने से पहले भी आपको कई टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे कई लोग प्रोटीन, विटामिन आदि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन आपको बीमार कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद से दवा ले लेना। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उन्हें इसके नेगेटिव परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के असर से उल्टी, चक्कर आना, सिर में दर्द से लेकर मोटापा, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए आप अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। उम्र और बीमारी के मुताबिक तय होता है दवा की डोज। डोज ऑफ मेडिसिन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज एंड डिजीज। आपने दवाओं पर नाम के साथ उसकी एमजी भी लिखी देखी होगी, जैसे 75 एमजी या 500 एमजी। ये दवा की डोज होती है। उम्र और बीमारी के मुताबिक डोज डॉक्टर तय करता है। अगर आपने छोटे बच्चे को हाई डोज दे दी तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। वही अगर हल्के बुखार में आपने हाई डोज ले ली तो आपको घबराहट या बेचैनी होगी। इसीलिए भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना खतरनाक है। वायरल होने पर या मलेरिया जैसे रोगों में भी लोग खुद से दवा ले लेते हैं, जिनका प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं होता है। कई बार तो इन रोगों से बचने के लिए लोग पहले से ही दवा खाना शुरू कर देते हैं। पर इन दवाओं को खाने से आपको रोग नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिना प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंट्स खाने के नुकसान बहुत है दोस्तों। साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। टीवी पर एड देखकर या इंटरनेट पर पढ़कर लोग सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोचते हैं, पर आपको नेचुरल फूड से ही पोषक तत्वों की कमी पूरी करनी चाहिए। खुद से सप्लीमेंट्स लेना हानिकारक हो सकता है। उम्र बढ़ने पर पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की मदद ली जाती है, पर उसे डॉक्टर बताते हैं अगर आप खुद से ही इन्हें खाएंगे तो इनका बुरा असर आपकी हेल्थ और स्किन पर हो सकता है। कई बार हार्मोन का स्तर घटा या बढ़ जाता है, जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं।
खुद से दवा लेने पर लीवर को नुकसान पहुंच सकता है।

0: बहुत सी दवाइयाँ लिवर को इफेक्ट करती है, इसीलिए डॉक्टर दवा के साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, पर खुद से दवा लेने पर आपका लिवर डैमेज हो सकता है। अगर आप दर्द के लिए पेन किलर खा रहे हैं तो लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपके बाल झड़ सकते हैं, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, सुस्ती आना, मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डिप्रेशन, मसल टाइटनेस एंड सोरनेस, ये सब पेन किलर से होते हैं। बुखार, खांसी या वायरल की दवा अगर आप खुद से लेते हो तो आपके पेट में गड़बड़, एसिडिटी, किडनी से जुड़ी शिकायत आदि हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक केमिस्ट की बताई हुई दवा भी न ले, कई बीमारियों में जांच की जरूरत होती है। दवा के साइड इफेक्ट तुरंत न दिखे पर आपको बाद में खुद से दवा लेने के दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर की मदद ले। With this very useful information about the harmful effects of self-diagnosing and self-medication, this is Chetan wrapping up for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, शाम के 5:30 हुए हैं और अब आप सुनेंगे प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जो हैं तो केवल 18 साल की, लेकिन जब स्केट्स पर इनके पांव पड़ते हैं तो ये हवा से बातें करने लगती हैं। जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है, आज ये भारत की सर्वाधिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली महिला खिलाड़ी हैं और भारतीय खिलाड़ियों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की संख्या के मामले में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा स्थान रखती हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेरणा, जुनून और उपलब्धियों की मिसाल जानवी जिंदल की, जो एक प्रतिभाशाली फ्रीस्टाइल स्केटर हैं। जानवी जिंदल ने केवल 9 वर्ष की आयु में स्केटिंग की शुरुआत की। फॉर्मल ट्रेनिंग की सुविधा ना होने के बावजूद जानवी ने अपने पिता के मार्गदर्शन में इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से स्केटिंग सीखी। निरंतर अभ्यास, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर इन्होंने अपनी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। सन 2019 में इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में राष्ट्रीय रोलर फ्रीस्टाइल स्केटिंग चैंपियनशिप जीतकर राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके बाद जानवी ने अनेक नए प्रयोग किए और पारंपरिक पंजाबी लोक नाच भांगड़ा ऑन स्केट्स और इसके साथ साथ योगा ऑन स्केट्स जैसी अनूठी विधाओं की शुरुआत कर खेल और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। जानवी भारत की पहली स्केटर है जिन्होंने स्केट्स पर सीढ़ियों से सुरक्षित नीचे उतरने का साहसिक प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि सहित इनके कई इनोवेशंस को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला है। अब तक जानवी जिंदल 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 8 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया एवं वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुकी हैं। जानवी जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सो मच, सभी को मेरा बहुत नमस्कार।
2: जानवी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना कैसा लगता है आपको?
3: आई थिंक बहुत अच्छा लगता है, एंड उससे ज्यादा अच्छा मेरे पेरेंट्स के लिए जब उन्हें मेरे पे प्राउड फीलिंग आती है, उस पे मुझे काफी गर्व होता है कि उन्हें अब मेरे नाम से जाना जाता है। अगर कोई उन्हें मिले वो कहते हैं अरे आप तो जानवी के पेरेंट्स हैं, तो आई थिंक उससे ज्यादा कोई प्राउड मोमेंट नहीं रहता एक पेरेंट्स के लिए। डेफिनेटली जब भी कोई बच्चा मुझे आके कहता है कि दीदी मैंने आपको देख के स्केटिंग शुरू करी,

0: या मुझे आपके जैसा बनना है। तो वो चीज जब मुझे सुनने में आती है तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि कोई मुझसे इंस्पिरेशन ले रहा है, कोई मुझसे मोटिवेशन ले रहा है, तो वो खुद में एक काफी प्राउड मोमेंट रहता है।
1: जी, तो ये जो स्केटिंग का जुनून है कहाँ से शुरू हुआ आपका?
0: आई थिंक स्केटिंग मेरे लिए कभी भी एज अ बहुत पैशनेट स्पोर्ट नहीं थी। मैंने जस्ट शॉपिंग करने गई थी, वहां पे स्केट्स देखे, पाए एंड सोचा एज अ हॉबी ले लेते हैं। ये जरूर था कि मैं शुरू से ही बहुत एडवेंचरस थी, मतलब हर एक फैमिली ट्रिप पे रॉक क्लाइंबिंग करना, रैपलिंग करना, रिवर राफ्टिंग करना, इन सब चीजों में बहुत आगे रहती थी एंड बहुत यंग एज से, 6-7 साल की एज से। तो इस चीज को देख के फादर को लगा कि कुछ ऐसा कराना चाहिए जो मेरे पैशन से मिलता हो। पापा ने रिसर्च करी एंड उन्होंने देखा कि फ्री स्टाइल स्केटिंग एक ऐसा गेम होता है स्केटिंग के अंदर जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, बी एट आपने अगर आपने जंप्स करने हैं, आपने रैंप्स पर ऊपर नीचे जाना है, आपने डांस करना है, तो ये सब कुछ आप स्केटिंग पे कर सकते हो। इस चीज को देख के पापा को लगा कि ये मेरे बहुत फिट बैठता है एंड इसको शुरू करना चाहिए। प्रैक्टिस करी, आई थिंक हमारा पहला ऑब्स्टिकल ये था कि इसका कोई कोच नहीं था, चंडीगढ़ में नहीं, नॉर्दर्न रीजन में कोई कोच नहीं था, तो हमें ये काफी मुश्किल आई कि अरे सिखाएगा कौन हमें स्केटिंग। तो पापा ने कहा कि जहाँ से हमें ये फ्री स्टाइल स्केटिंग का पता लगा है वहाँ से हम सीख क्यों नहीं सकते। तो वो रातों रातों हम दोनों बैठते थे, घंटों घंटों वीडियोस देखते थे, ट्यूटोरियल्स देखते थे, हम देखते थे कि किस तरह हम उस ट्रिक को स्केट्स पे ला सके। और इसी तरह करते करते आई थिंक जब मेरा स्केटिंग एज अ हॉबी से पैशन बना, दैट वाज द मोमेंट जब मैं पहली बार नेशनल्स गई, ऑल इंडिया गेम्स, मैंने अपना बेस्ट दिया एंड मैं चंडीगढ़ के लिए पहला गोल्ड मेडल लेके आई अपने मेडन अटेम्प्ट में। तो वो एक मोमेंट जब वहाँ पे अनाउंस हुआ कि चांदवी फ्रॉम चंडीगढ़ वन द गोल्ड मेडल, वो मोमेंट मेरे लिए एक बहुत अनोखा रहा एंड उसी ने मेरे को स्केटिंग एज अ हॉबी से एज अ पैशन बना दिया।
1: जी, जानवी, बहुत ही गर्व की बात है, बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के आपने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तो ये जो सफर है आपका बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के, कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपका ये सफर?
0: काफी मुश्किल रहा क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे उनके पास ट्रेनर्स थे, उन्हें एक नई ट्रिक सीखने के लिए बहुत कम टाइम लगता था, कंपेयर टू मुझे महीनों लग जाते थे सिर्फ समझने में, और उसको करना तो फिर और भी टाइम लगता था। तो मैंने ये चीज काफी नोटिस करी कि मुझे बहुत टाइम कंज्यूम लगता था हर एक चीज को सीखने में, पहले वीडियोस देखना पड़ता था। बट आई थिंक अगर वो जुनून हो आप में तो इवन इफ आपके पास रिसोर्सेज ना हो तब भी आप उस चीज को हासिल कर सकते हो। और मैंने ये प्रूफ किया, हर साल मैं नेशनल मेडलिस्ट रही, अपनी फील्ड में बेस्ट रही, चंडीगढ़ में मैंने और भी बच्चों को प्रेरित किया कि आप भी इस चीज में आओ, एंड देन मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए।
1: जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपके पिताजी ने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई आपको राष्ट्रीय चैंपियन बनाने में, और 11 बार गिनीज बुक रिकॉर्ड में आपने आपका नाम जो दर्ज हुआ उसके लिए, तो किस तरह से आपके पिताजी ने साथ दिया आपका, किस तरह से इतनी अच्छी भूमिका निभाई कि आज आप इस मकाम पर हैं?
0: आई थिंक मेरी लाइफ में मेरे डैड का सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मेरे को याद है कि शुरू में जब मैं ये स्पोर्ट करती थी तो इस स्पोर्ट में काफी गिरना होता था एंड गिरना भी आप 5 फीट से गिरोगे, कभी स्टेयर से गिर गए, इस तरह की चीजें होती थी। एंड बहुत सारे रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे थे जो कहते थे पापा कि बेटी को क्या करा रहा है, चोट लग गई, दाग पड़ गए तो आगे मुश्किल आएगी, क्यों इसको इस चीज में डाल रहा है, कोई इजी गेम कुछ जिसमें इतना खतरनाक चीजें ना हो वो चीज क्यों नहीं कराते। मुझे याद है पापा हमेशा एक आंसर सुनते थे एंड दूसरे से निकालते थे, मतलब वो कभी नहीं रुके, एंड इवन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स अगर मैं गिरती थी तो वो मेरे पास नहीं आते थे। बीइंग फादर लगता तो है कि हाँ गिरी है, रोना आ रहा है, जाके सहलाता हूँ, बट उन्होंने कभी नहीं किया, बिकॉज उन्हें पता था अगर मैं अभी इसके पास गया, इसको मैंने उठाया, तो ये खुद नहीं खड़ी हो पाएगी कभी भी। तो आई थिंक इस चीज से ये तो समझ आता है कि उनका मेरे लाइफ में तो बहुत ही बड़ा रोल रहा है।
1: जी, और जब इंसान लीक से हटके कुछ करने की कोशिश करता है तो बहुत से लोग आके मशवरा देते हैं, अपनी सलाह देते हैं, लेकिन आपका जुनून, आपका पैशन, वो आपके लिए एक उपलब्धि बन गया। तो जब आप राष्ट्रीय चैंपियन बनी तो वो जो खास पल था वो आपके लिए कैसा रहा, कैसा महसूस हुआ आपको?
0: बहुत अच्छा लगा। इवन एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ, जब मेरे दादी और मेरी मदर थे मेरे साथ उस वक्त, जब उन्होंने अनाउंस किया, हम थोड़ा दूर थे पोडियम से, मैं तो चलो स्केट्स में थी, मैं दौड़ गई एंड मदर मेरे पीछे आए, दादी का एक स्टेप पे पैर भी अड़ गया, पर वो इतना खुश थे, उन्हें वो पेन फील ही नहीं हो रहा था। सबके लिए काफी प्राउड मोमेंट था। इवन मैं जब चंडीगढ़ आई तो काफी सभी ने मेरे को बहुत अप्रिसिएशन दिया, इवन गवर्नमेंट ने मेरे को काफी अप्रिसिएशन दिया कि मैं अपने मेडन अटेम्प्ट

0: में वो भी गोल्ड मेडल लाई हूँ, तो एक काफी खुद में भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था एंड आई थिंक पूरे चंडीगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट रहा है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, खुद के लिए भी एक प्राउड मोमेंट रहता है और उसके बाद जो उपलब्धि आपने हासिल की वो सिटी ब्यूटीफुल के लिए बहुत गर्व की बात है। और आज आपके नाम 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो पहला रिकॉर्ड जब आपने बनाया तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था?
0: काफी नर्वस थी मैं, काफी टेंशन थी कि कैसा रहेगा, बिकॉज जब आप एक रिकॉर्ड का अटेम्प्ट देते हैं तो आपके पास एक ही मोमेंट होता है, एक अटेम्प्ट होता है आपके पास करने के लिए, और वो एक मोमेंट आपको बताएगा कि यस आर यू अ रिकॉर्ड होल्डर या आप नहीं हो। तो मेरे लिए बहुत नर्वसनेस थी क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग थे, आई थिंक मिनिमम 30 लोग की टीम तो मेरे साथ वहाँ पे थी जो उस मोमेंट के लिए वहाँ पे आई थी। तो आई थिंक सभी के लिए मेरे लिए एक प्रेशर पॉइंट था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बट इन दी एंड मुझे लगा कि आई थिंक मुझे अपने आप को रिलैक्स करके जो मैं हमेशा करती हूँ उस चीज़ को करना चाहिए। इवन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स मेरे को काफ़ी नर्वसनेस होती है, तो मैं तो सिर्फ हेडफोन्स डाल के गाने सुनती हूँ एंड आई ट्राई

0: कि आई थिंक मुझे अपने आप को रिलैक्स करके जो मैं हमेशा करती हूँ उस चीज़ को करना चाहिए। इवन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स मेरे को काफ़ी नर्वसनेस होती है तो मैं तो सिर्फ हेडफोन्स डाल के गाने सुनती हूँ एंड आई ट्राई मैं अपने आप को बहुत काम रखूँ, अपनी रिदम में रहूँ, उससे टूटू ना। तो सेम चीज़ मैंने अपने पहले रिकॉर्ड में करी एंड आई थिंक जब उसका कन्फर्मेशन आया तो मैंने तो मेल देखी भी नहीं थी, मेरे फादर ने मेल देखी पहली बार, तो उन्होंने मेरी मदर को बताया, वो केक वगैरह लाए एंड मुझसे पूछते कि आ चल केक काटे, मैं क्यों क्या हुआ, बोलते सोच क्या हुआ एंड उस चीज़ को हो गया था थोड़ा टाइम, महीना आई थिंक हो गया था। तो मैंने कहा मुझे ऐसे याद भी नहीं आ रहा कि क्या चीज़ मैंने ऐसे करी, चलो मैंने 3-4 गेस मारे उसके बाद मेरे को याद आया अरे मेरा गिनीज तो नहीं हो गया। तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंट था, मतलब मुझे तो बहुत ही अनबिलीवेबल लग रहा था कि अरे मैं अब रिकॉर्ड होल्डर हूँ, वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, तो बहुत अच्छा लगा
1: जी। तो आज आप भारत की सर्वाधिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली फीमेल खिलाड़ी हैं, या यूं कह लें कि अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले जो हैं उनकी संख्या के मामले में आप सचिन तेंदुलकर से दूसरे नंबर पे हैं, तो ये जो पल है ये किस तरह से महसूस करती हैं?
0: काफी अच्छा लगता है कि फीमेल्स में मैं पहले नंबर पे हूँ, ताकि मैं और भी लड़कियों को मोटिवेट दे पाऊँ कि अगर आपके अंदर इच्छुक है तो आप उस चीज को हासिल कर सकते हो। और सचिन तेंदुलकर बाद एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर मेरे सेकंड हाईएस्ट हूँ, उनके 19 रिकॉर्ड्स हैं, तो उस चीज़ पे मुझे काफ़ी गर्व होता है कि क्रिकेट को हम बहुत मानते हैं एंड काफ़ी इंजॉयबल गेम हम उसको कहते हैं, जिसको देखने के लिए आई थिंक भारत का हर व्यक्ति उसमें इच्छुक रहता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्केटिंग को भी उस मुकाम तक पहुँचा पाऊँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी
1: जी।
0: उसके अलावा आई थिंक मेरे लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत अनएक्सपेक्टेड आया, क्योंकि शुरू में हम इंटरनेशनल का प्लान कर रहे थे कि इंटरनेशनल जाना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, बट उसके लिए उतने फाइनेंस नहीं थे, उतने पैसे नहीं थे। हम 3 सिबलिंग्स हैं तो ऐसा नहीं था कि सारे मेरे पे ही लगाने हैं, हम तीनों पे इक्वली पेरेंट्स ने लगाना था, तो उस कारण से इंटरनेशनल में कभी जा नहीं पाई। अब लगा कि अरे अगर इंटरनेशनल एक वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है तो किस तरह मैं ये दिखाऊं कि आई एम स्टिल वन ऑफ द बेस्ट स्केटर्स इंटरनेशनल लेवल पे। तब हमने रिसर्च करी, इंटरनेट पे गए, ढूंढा एंड गिनीज हमें मिला कि यस एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इज अ रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, जो कह सकते हैं कि यस इसने कुछ करा है एंड बहुत बहुत सालों की मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि आप आज खड़ो और सोचो कि अरे मैं बनाऊंगी, बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत फेलियर्स आते हैं, इवन मेरे पास काफ़ी फेलियर्स मिले हैं मुझे। तो जब मेरे को ये टाइटल मिला कि यस अब मैं इंडिया की हाईएस्ट फीमेल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इवन चंडीगढ़ में मुझे ऐसा लगा कि अरे एक नेशनल लेवल पे ये रिकग्निशन मिलना, अब मुझे लगता है कि मैं और भी बच्चों को और भी लड़कियों को मोटिवेशन दे पाऊंगी
1: जी। बिल्कुल जानवी, जिस तरह से आपने बताया कि उतार चढ़ाव जिंदगी का एक हिस्सा है और आपकी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे पल आए होंगे स्केटिंग करते हुए, तो कभी आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पे आके कुछ रुक गया है या थोड़ा डाउन आप फील करते हो जिंदगी में, तो वो जो ऐसे पल आते हैं जिंदगी में किस तरह से आगे निकलते हो इन चीजों से?
0: आई थिंक मेरे लिए ये डाउन मोमेंट बहुत बार आया है, इवन जब मैं इंटरनेशनल नहीं जा पा रही थी तब भी आया था। मैंने एक पॉइंट पे तो गिव अप मारने का भी सोचा कि अरे अब मैं गेम खेल के क्या करूंगी जब मैं अपने ड्रीम को हासिल नहीं कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे आई थिंक मेरे को सिर्फ यही सीखने को मिला कि अगर भगवान एक दरवाजे को बंद करता है तो एक खिड़की जरूर खोलता है, आपको जस्ट उस खिड़की को ढूंढना है। और मेरे लिए वो खिड़की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी। इंटरनेट पे गई, ढूंढा, बहुत रिसर्च मारी, आई थिंक महीनों महीनों मैंने तो पहले रिसर्च करी कि क्या करना चाहिए। इवन जब मैं 16 साल की थी तो उस वक्त ये था कि 16 साल से नीचे आप बना नहीं सकते रिकॉर्ड, तो मैंने काफ़ी टाइम होल्ड रखा उसको कि प्रैक्टिस करी कि अगर मुझे ये चीज़ बनानी है तो इसके लिए मुझे ये चीज़ 16 साल पर होते ही करना है। एंड 16 से 17 के बीच में मैंने 5 गिनीज रिकॉर्ड्स बनाए, उसके बाद आज टिल डेट 18 साल पर मैंने 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, विच इज़ द हाइएस्ट इवन एज अ 18 ईयर, मतलब एडल्टहुड से पहले पहले इतने रिकॉर्ड्स कभी नहीं बने हैं। तो डेफिनेटली उतार चढ़ाव आते ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में ही आए हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, हर स्पोर्ट्स प्लेयर, हर एकेडमिक्स में आते ही आते हैं। इट्स जस्ट आप उसको किस तरह से टैकल करोगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई ना कोई खुला होगा, आपको बस उसको ढूंढना है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, जब चारों तरफ अंधेरा नजर आए तो कहीं से एक रोशनी की किरण जब आपको दिखाई देती है तो उसी रोशनी की किरण में आगे बढ़ते हुए आपको मंजिल हासिल करनी होती है और वो आपने बखूबी कर दिखाया। जानवी, जिस तरह से आपने बताया कि आपको कभी स्ट्रेस फील होता है तो आप म्यूजिक सुनती हैं, तो यहाँ पर आपकी पसंद

0: का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे तो कौन सा गीत सुनवाएं?
1: आई थिंक मेरे लिए जब मैं कॉम्पिटिशन में होती हूँ, काम म्यूजिक जो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगे एंड बहुत ओल्ड स्टाइल रहे, आप उस गाने में बह जाओ, ऐसे से गाने सुनने में मुझे काफी मजा आता है। एक ऐसा गाना जो मैं सुनती रहती हूँ वो है गुलाबी आंखें। आई थिंक वो मेरा एक काफी फेवरेट सॉन्ग है। अगर मेरे को ऑन ट्रैवल भी सुनना हो मैं वो चीज जरूर सुनूंगी।
0: जी, बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी मेहमान हैं फ्री स्टाइल स्केटर राष्ट्रीय चैंपियन जाह्नवी जिंदल। जाह्नवी जी, हम लोग बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि किस तरह से जिंदगी में कभी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो आप किस तरह से अपने बुलंद हौसले के साथ, अपने जुनून के साथ उससे आगे बढ़ जाती हैं, और आपने बखूबी कर दिखाया है। और आज आप फ्री स्टाइल स्केटिंग में आप राष्ट्रीय चैंपियन हैं, 11 बार की गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो आपने भांगड़ा ऑन स्केट्स, पहले उसकी बात करते हैं, तो ये आपके दिमाग में कहां से आया, कैसे शुरू हुआ?
1: ये चीज अनएक्सपेक्टेड आई थी मेरे लिए, तो क्योंकि कहते ना बंद दीवार में दिमाग घूमता रहता है। कोविड के टाइम पे हम सब एक घर में बंद थे, प्रैक्टिस मेरी बहुत लिमिटेड हो गई थी। मैंने तो घर में सारे फर्नीचर को अलग अलग करके एक अपना प्रैक्टिस एरिया बना दिया था। मुझे घर पे बैठ के ऐसा लगता है, अरे मैं ये भी कर लूँ, अरे मैं ये भी कर लूँ, मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ। उस वक्त मेरे को डांस का तो काफी शौक था ही, तो मैंने पंजाबी गाने भी सुनते ही थे। भांगड़ा, बीइंग चंडीगढ़ में रहती हूँ तो भांगड़ा तो हमारे खून में ही है एक तरह से, तो भांगड़ा भी मैं करती रहती थी। तो जब मैंने भांगड़ा स्केट्स पे करना शुरू करा तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, अरे अच्छा इनोवेशन आ रहा है, अच्छा मिक्स हो रहा है, करने में मजा आ रहा है, तो मैं करती रहती थी। मैं किसी एक भांगड़ा मूव पे अड़ी थी एंड मैं वापस इंटरनेट पे करी गई एंड मैंने देखा कि अरे मैं सर्च करती हूँ कि कोई ऐसा स्केटर है जो इस चीज को कर रहा है जिससे मैं सीख सकती हूँ। तब जाके मुझे पता लगा कि भांगड़ा ऑन स्केट्स तो कोई कर ही नहीं रहा, एंड उस पॉइंट पे मुझे लगा कि अरे भांगड़ा पंजाब का कल्चर, लोक नाच, इसको क्यों ना मैं आगे लेके जाऊं। तो स्पोर्ट्स को कल्चर के साथ मर्ज करना, दैट वाज माय व्यू पॉइंट कि इस चीज को एक आगे बढ़ाते हैं, एक आगे मिसाल पे लेके जाते हैं। तो मैंने भांगड़ा ऑन स्केट्स इंट्रोड्यूस करा वर्ल्ड में, टचवुड इतने लोगों को पसंद आया। इवन आज मैं अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ भांगड़ा ऑन स्केट्स की रील, तो मेरे मिलियंस में व्यूज जाते हैं, मेरे किसी भी रील पे इतने नहीं जाते हैं जितना मेरे भांगड़ा ऑन स्केट्स के लिए जाते हैं। इवन कनाडा से बहुत सारे हमारे जो इंडियंस हैं वो देखते हैं एंड वहां से कमेंट्स आते हैं कि कुड़ी तू बहुत चंगा कर रही है, बहुत चंगा लगते हैं। उन कमेंट्स को पढ़ पढ़ के मेरे को इतनी खुशी होती है कि जो मैंने छोटी सी एज अ प्ले थिंग मैंने जो इनोवेशन लाई वो इतने लोगों में इतना

0: उसको अच्छा लगा। बहुत सारे स्केटर्स, बहुत सारे छोटे छोटे स्केटर्स ना मेरे को भगवान स्केट करके उसको टैग भी करते हैं मुझे, और मेरे को अच्छा लगता है कि अरे जब मैंने शुरू करा और भी बच्चे उसको कर रहे हैं। मैं उसमें भी जाके उनको कहती हूँ कि अरे आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे देख के ऐसा शुरू करा। काफी अच्छी फीलिंग आती है कि
1: बिल्कुल। और सबसे अच्छी जो बात आपने कही कि स्केटिंग के थ्रू आप किस तरह से अपने कल्चर को आगे लेके जा रही हैं, और पूरी दुनिया में आपने भांगड़ा ऑन स्केट्स के थ्रू आपने भांगड़ा को प्रमोट भी किया। तो अगर योगा ऑन स्केट्स की बात करें तो किस तरह से आपके दिमाग में आए?
0: ये उसी वक्त आया था जब मैंने भांगड़ा स्केट्स इंट्रोड्यूस किया था, तो मुझे लगा कि कुछ और भी इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ और भी मर्ज करते हैं, कि काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ जितना प्यार मुझे भांगड़ा स्केट्स के लिए मिला है अगर मैं कुछ और भी मर्ज कर सकूं। तो उसमें मैं योगा करती थी क्योंकि मेरी स्केटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी काफी चाहिए होती है, बैलेंस बहुत चाहिए होता है। अगर हमारे 8 व्हील्स है तो सिर्फ एक व्हील पे बैलेंस करना और उस पर स्पिन्स करना, मैन्यूवर्स करना, बैठना, तो बैलेंस एक बहुत बड़ी गेम होती है हमारे लिए। तो योगा पे करती थी, एंड मैंने सोचा कि अरे योगा और स्केट्स भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने बहुत सारे आसन स्केट्स पे करे ट्राई, एंड उसको भी काफी अप्रिसिएशन मिला। इवन आज अगर कोई योगा का प्रोग्राम होता है तो मुझे इनविटेशन आता है कि आप आओ प्लीज, और भी योगा एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करो, तो काफी अच्छा लगता है। एंड इवन भांगड़ा स्केट्स के लिए मुझे पहली बार मेरा स्टेट अवार्ड मिला था
1: जी,
0: विच वॉज चंडीगढ़ का। उस वक्त मैं सबसे यंगेस्ट थी, आई थिंक मैं 12 साल की थी, एंड दैट वॉज द यंगेस्ट स्टेट जिसमें किसी भी चंडीगढ़ को एक स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया है। उसके बाद मुझे दूसरी बार गिनीज के लिए मिला था स्टेट अवार्ड, विच वाज इन 2026। उसके बाद तो मैं मुझे पता लगा कि मैं चंडीगढ़ में ओनली चंडीगढ़ियन हूँ जिसको चंडीगढ़ में एज एन इंडिविजुअल 2 बार स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफी अच्छा लगा कि मेरे दोनों ही अचीवमेंट्स में मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला, चंडीगढ़ ने इतना सम्मानित किया
1: जी। जानवी, आप भारत की पहली ऐसी स्केटर हैं जिन्होंने स्केट्स पर सीढ़ियों से सुरक्षित नीचे उतरने का ये जो कारनामा कर दिखाया है, तो ये आपके दिमाग में कहां से, आपको डर बिल्कुल नहीं लगा?
0: ये चीज मैं इंटरनेशनल स्केटर्स को देखती थी, वो करते थे सीढ़ियों पे नीचे रोल डाउन करना बिना रुके, एक स्मूथ मोशन में नीचे आना। तो मुझे लगा कि अपने नेशनल लेवल पे परफॉर्म करूंगी इस चीज को, कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही हुआ, मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस करी एंड बहुत गिरी हूँ मैं। एक बार तो मैं 15 स्टेयर से नीचे गिरी थी, ऐसे घूमते घूमते घूमते घूमते नीचे आई, मेरी पूरी राइट साइड इंजर हो गई थी। बट जब मैंने उस चीज को हासिल किया और जब मैं इंडिया में पहली ऐसी स्केटर बनी जिसने इस चीज अचीव कर पाई हूँ।
1: जानवी, इतनी छोटी उम्र में लगातार विश्व रिकॉर्ड बनाना आसान नहीं होता, तो आप किस तरह से तैयारी करती हैं?
0: मैं एक रिकॉर्ड का एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक रिकॉर्ड टाइम मारना था जिसमें मुझे मैक्सिमम स्पिन्स करने थे विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में सबसे ज्यादा स्पिन्स करने के लिए आपको शुरू में अच्छी स्पीड चाहिए, बीच में भी अच्छी स्पीड चाहिए, एंड एंड तक आपको रखना है कि आप अपनी मैक्सिमम स्पीड में रहो स्पिनिंग के ड्यूरेशन में। तो मुझे याद है मैं जब प्रैक्टिस करती, मेरे को इस रिकॉर्ड के लिए बहुत टाइम लगा। आई थिंक कम से कम 6 महीने मैं इसके लिए प्रैक्टिस करती रही, क्योंकि मैं इतनी जल्दी डिजीनेस नहीं होती हूँ। बट जब आपको एक अच्छे पेस पर, एक अच्छी स्पीड पे स्पिन मारना होता है, तो आपको एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए, स्ट्रांग विलनेस चाहिए कि आप उस पे चक्कर ना खाओ, आपका बैलेंस सही रहे, और वो भी सिर्फ 2 व्हील्स पे। 8 व्हील में से सिर्फ आगे के 2 व्हील्स पे आपको बैलेंस करके उस चीज को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स करना है। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। जब मेरा ये रिकॉर्ड बन गया, मुझे खुद पे काफी प्राउड हुआ कि इतने महीनों की जो मेरी प्रैक्टिस थी उसने एक मुझे रिजल्ट दिया। एंड देन मैंने इसी रिकॉर्ड को इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस खारदुंगला पास पे अटेम्प्ट करा, जहाँ पे एक कहते हैं चलना एक टास्क होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इतना कम होता है कि लोगों के लिए भागना तो दूर की बात है, चलना ही बहुत मुश्किल रहता है। तो वहां पर जब मैंने इस चीज को अटेम्प्ट किया, तो वहां पे जो भी सोल्जर्स थे दे वर वेरी वरिड कि बेटा ध्यान से रहना। पहले तो बहुत थैंकफुल उन सोल्जर्स के लिए कि वो मेरे साथ खड़े रहे उतनी ठंड में, स्नो हो रही थी, ठंड इतनी थी, ऑक्सीजन बहुत कम था, एंड वो मेरे साथ खड़े रहे कि कुछ भी बेटा अगर लगे कि हाँ ऑक्सीजन कम हो रही है, हमारे पास ऑक्सीजन टैंक्स है, तुम जल्दी से हमें बता देना, हम यहीं पे खड़े हैं। एंड जब मेरा रिकॉर्ड हुआ, आई वॉज वेरी थैंकफुल टू देम कि आप मेरे साथ इस रिकॉर्ड में इतनी देर खड़े रहे, हैंड्स ऑफ टू यू।
1: जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खारदुंगला पास की आपने बात की, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ना के बराबर होती है, और इतनी ऊंचाई पे जाके आपने ये कारनामा कर दिखाया। पहले से सोचा था आपने कि वहाँ पे जाके ये कारनामा करके दिखाना है?
0: हम तो सिर्फ एक फैमिली ट्रिप के लिए गए थे लेह लद्दाख, एंड बीच में उस पास को हमने क्रॉस करना था, तो मैं स्केट्स लेके गई थी, मुझे था कि अरे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी एंड एवरीथिंग। बट उसके दौरान ही मैंने अपने गिनीज रिकॉर्ड के लिए बहुत प्रैक्टिस करी थी, तो मुझे लगा कि जब मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है एंड मुझे अपनी बॉडी पे बिलीव है कि मेरी बॉडी में उतना स्टैमिना है कि मैं उस चीज को होल्ड कर सकूं, तो मैंने सोचा

0: इसको अटेम्प्ट करते हैं। एंड बहुत लास्ट मिनट डिसीजन था, मतलब आई थिंक हार्डली 3-4 किलोमीटर पहले हमने डिसाइड किया कि इस चीज को करना है। मैंने कहा यस, मेरे में इतना कैपेबिलिटी है कि मैं उस चीज को करूंगी। और मैंने स्पिन करा, एक मिनट बाद मेरे से खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि बॉडी इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी। स्टिल मैंने वहां पे उसको करा। बहुत सारे विजिटर्स जो टूरिस्ट वहां पे थे, दे वर क्लैपिंग, दे वर मेकिंग वीडियोस। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि वाओ बेटा, ये चीज मैं अपने घर पे जाके वापस मैं अपने रिलेटिव्स, अपने पोतियों को दिखाऊंगा एंड उन्हें दिखाऊंगा कि अरे हम इस रिकॉर्ड होल्डर से मिले थे वहां पे।
1: जानवी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहां पर आपकी पसंद का एक और गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो इस बार कौन सा गीत सुनाएं?
0: आई थिंक इस बार हम कुछ थोड़ा एक्साइटिंग, कुछ एनर्जेटिक सुनते हैं। सेनोरिटा एक काफी अच्छा सॉन्ग है मुझे ऐसा लगता है।
1: बिल्कुल, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी मेहमान हैं फ्री स्टाइल स्केटर राष्ट्रीय चैंपियन जाह्नवी जिंदल। जाह्नवी, आज आप जैसे बहुत से हमारे सुनने वाले युवा जो है वो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप उनको क्या कहना चाहेंगी खेल को लेकर, पढ़ाई को लेकर और टाइम मैनेजमेंट को लेकर?
1: आई थिंक मैं यही कहूंगी कि अपने पैशन को फॉलो करो, उस पे डटे रहना और गिव अप ना मारना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में क्या रखा है। यस, आज के टाइम में भी अभी भी स्पोर्ट्स को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, इस चीज में मैं जरूर कहूंगी, बट स्टिल आपको जो चीज स्पोर्ट्स सिखाती है वो और कुछ नहीं सिखा सकता। आज मैं यहाँ बैठ के इतनी कॉन्फिडेंस में बात कर रही हूँ, 100 लोगों के आगे मोटिवेशनल लेक्चर्स देती हूँ, वो क्यों है? क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में उस चीज से कॉन्फिडेंस ला पाई हूँ। एंड आई थिंक एज अ पर्सनल डेवलपमेंट भी स्पोर्ट्स आपको बहुत अच्छे से स्टैंडिंग देता है सोसाइटी में। आखिर में युवा मैं काफी देखती हूँ आज के टाइम में पंजाब में, तो बहुत ही ज्यादा नशे की तरफ जा रही है, तो मैं ये कहूंगी स्पोर्ट्स खुद में एक नशा है, जस्ट आप एक सही राह पे जाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाएगा, टाइम मैनेजमेंट, पैशन को फॉलो करना, गिव अप ना करना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना, एंड जस्ट डू व्हाट यू थिंक इज राइट फॉर यू। जो आपको मन करता है आप उस चीज को करो जिसमें आपको खुशी मिलती है।
0: जाह्नवी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आई, आपने अपनी प्रेरणादायक कहानी है जो सफर है आपका, उसकी सब बातें आपने हमारे साथ शेयर की, और हम भी ये दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से खेल में आगे बढ़ती जाएं, इंटरनेशनल स्तर पर भारत का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों, आज सुहाना सफर आकाशवाणी

0: के संग कार्यक्रम में हमारी मेहमान थी फ्री स्टाइल स्केटर राष्ट्रीय चैंपियन जानवी जिंदल। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रमन भगत। अब आज का सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: सफर आकाशवाणी के संग।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है श्रोताओं। शाम के 6 बजने को ही आकाशवाणी दिल्ली से अब हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
4: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
3: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बाग चराजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक

तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
0: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
2: ये आकाशवाणी है।
0: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
2: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
0: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
2: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
0: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
2: आइए मिलकर मनाएं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र के लिए उठाए गए कदम किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुए। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारी संगठनों की 3 दिवसीय प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर कल रविवार को बैंकों के खुले रहने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी पर युवाओं को रोजगार के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 2900 रूपये का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय सहित नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं। वे आज केरल के कुंद्रा में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत कई विकास पहलों का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 25,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट खोलेगा।
1: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित

0: देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी लेन देन को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस 138वीं कड़ी का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अमृतसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर युवाओं को रोजगार के नाम पर गुमराह करने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान में 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार का वादा कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूद पंजाब सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है।
1: हरियाणा सरकार दे विच रोजगार देने दा काम ए साडी सरकार ने कीता है साथियो। 45,000 यूथ नु 18 महीने दी सरकार ने, और मैं दसना चांदा 5600 हरियाणा पुलिस दी इंटरव्यू चल रहे ने, और 8,500 और वैकेंसी दे इंटरव्यू चल रहे ने अलग अलग विभागां दी। साथियो असि जेड़ा गल कहंदे आ उस नु पूरा करन दा काम ए साडी सरकार करदी है, परंतु इत्थे ता पंजाब दे यूथ दा भैणा दा किसान दा चुटकलियां ते पेट भरन दा काम कर रहे आ। तुहाडी सरकार ने काम की कीता है ओ दसण दा काम करो, चुटकलियां ते पेट नहीं भरदा है।
0: उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरदार भगत सिंह के नाम पर वोट मांगने के बाद उनकी सोच के अनुरूप काम न करके शहीद भगत सिंह का अपमान भी किया है, और उनके नाम पर झूठे वादे करने के लिए पंजाब के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि संस्कृति, सोच और जज्बे का प्रतीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के होशियारपुर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यह सम्मेलन पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे बाबा श्री चंद जी महाराज के 532वें प्रकाश पर्व और पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए एक यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने पंजाब के लोगों से नशे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, ताकि राज्य न केवल नशा मुक्त बन सके बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सके।
2: देखिए सरकारां दी जो जिम्मेवारी होंदी है लॉ एंड ऑर्डर दी व्यवस्था नूं ठीक करना ते क्राइम नूं रोकना। इन्हां ने गल कही सी कि असी क्राइम नूं रोकांगे, क्राइम नूं खत्म करांगे, नशे नूं खत्म करांगे। अज घर घर दे विच नशा आ गया। जद घर घर दे विच नशा आ जांदा क्राइम तां बढ़दा है, घर घर दे विच नशा है, नशे दे विच आ करके गलत काम करदे ने।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हरियाणा के किसानों को भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत बाजरे के लिए 2900 रुपए का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। चंडीगढ़ में जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजरा 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद मूल्य के बीच की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को बाजार में इससे अधिक भाव मिलता है तो इसके बिक्री मूल्य 2900 रुपए और बाजार खरीद मूल्य में अंतर की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने आज एशियाई खेलों के फाइनल कबड्डी मुकाबले में ईरान को 37-34 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। इस ऐतिहासिक जीत में चरखी दादरी जिले के गांव बिलावल की बहू और ऑलराउंडर खिलाड़ी रितु शिरौन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम की जीत के बाद रितु शिरौन के गांव में मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। जापान के आईची नागोया में आयोजित

एशियाई खेलों में आज भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल मुकाबले में ईरान को पराजित कर स्वर्ण पदक जीत लिया। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र के लिए उठाए गए कदम किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुए। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारी संगठनों की 3 दिवसीय प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर कल रविवार को बैंकों के खुले रहने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी पर युवाओं को रोजगार के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: बैंक यूनियना दी संयुक्त फोरम वालों 28 तो 30 सितंबर तक बुलाई गई तजवीजशुदा 3 दिन देशव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनजर चुकया गया। इसने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एतवार को सारिया बैंक शाखावां दफ्तर एटीएम लिंक शाखावां अते करंसी चेस्टां नूं पूरी तरह चालू रहने की प्रवानगी दी है। इस दौरान जनतक खेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल दौरान महीनेवार मुफ्त हद तो वध एटीएम लेन देन ते लगन वाली फीस माफ करने का फैसला किया। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साड़ा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर और यूट्यूब से साड़ा चैनल है @AIR जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनतक सेवा च 25 साल पूरे हो रहे हैं तो एक अजिहा सफर है जोड़ा जन सेवा तो देश सेवा के दे मंत्र से अटुट वचनबद्धता नाल प्रभाषित हों सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन की इस सोच तो प्रेरित होकर सरकार साल 2047 तक एक विकसित भारत के टीचे को हासिल करने लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास से समाजिक सशक्तिकरण राही यह समर्पण लोगों के जीवन च बदलाव लिया रहा है। अज सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष लड़ी च असी तुहाड़े लिए एक मिसाल लेके आए हैं कि किस तरह इस दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना राही अमल च लिया गया। होर वेरवे नाल एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 विच भारत सरकार द्वारा उन्हां लोकां नूं फंड देण लई शुरू कीती गई सी जो अपने छोटे कारोबार शुरू करना चाहुंदे सन। पहलां उह अपने कारोबारां नूं विकसित करन लई वित्त प्राप्त करन विच असमर्थ सन। सरकारी सूत्रां अनुसार बैंकां द्वारा पंजाब समेत देश भर विच 57 करोड़ तों वध लाभपात्रियां नूं 40 लाख करोड़ रुपए तों वध दे कर्जे वंडे गए हन। पंजाब दे 2 लाभपात्रियां ने अपने कारोबार शुरू करन लई मुद्रा योजना तहत कर्जा प्राप्त करन तों बाद अपनी खुशी सांझी की।
2: मैं गुरमुख सिंह हरिपुर का रहने वाला, मेरा सीसीटीवी और कंप्यूटर एसेसरी और नेटवर्किंग का काम है। काम नूं अगे वधाउण वास्ते 1 लाख रुपए की जरूरत सी। मैं अपने पिंड यूको बैंक विच गया और उत्थे मैनेजर साहब नाल गल की। सर हुणा ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिहड़ी आ उहदे विच तुहाडा लोन कर दिंदे आ और उह लोन मैनूं मिलिया और उहदे विच मैं अपना बहुत वधिया काम कर रहा।
3: मैं पलक जलंधर पंजाब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत यूको बैंक तो लोन लिया सीगा अपनी बुटीक खोलन वास्ते। मैं अज अपने पैरां ते स्टैंड हां। मैं धन्नवाद
1: अनुसूचित कबाइले ओबीसी भाईचारे नूं दित्ते गए। किरत रुजगार मंत्रालय मुताबक इस योजना राही करोड़ां लोकां नूं नौकरियां मिलियां जो कि रोजी रोटी दे नाल नाल उद्यमां नूं बनाउण विच अपनी भूमिका नूं दर्शाउंदी है। 2024 विच मुद्रा कर्जे दी सीमा 10 लाख तो वधा के 20 लाख रुपए कर दी गई जिस नाल सफल उद्यमियों नूं फायदा होया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने नौकरी दी पाल वालियां नूं नौकरी देन वालियां विच बदल दिता। राजेश बाली आकाशवाणी खबरां जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबका प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उन्हां दी जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने जनतक जीवन दौरान पूरी लगन दे नाल देश दी सेवा की। सुल्तानपुर लोधी की पवित्र कालीवेई किश्ती मुकाबलों की गवाह बनन जा रही है। पवित्र कालीवेई च कैकिंग अते कनोइंग दे सूबा पदरी मुकाबले 10 तो 15 अक्तूबर तक करवाए जा रहे हैं। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सिचेवाल ने अज तैयारियां का जायजा लेंदे हुए मापियां नूं अपील की थी कि वह आपो अपने बच्चों नूं पानी वालियां इन्हां खेडां नाल जोड़न वास्ते प्रेरित करन। पंजाब पुलिस ने अज फिरोजपुर विच पुलिस नाके ते चैकिंग दौरान इंस्पैक्टर बलदेव सिंह नूं 3 किलोग्राम तो वध हैरोइन ते हथियारां समेत गिरफ्तार कीता है। फिरोजपुर दे एसएसपी भुपिंदर सिंह ने पत्रकारां नूं दस्सिया कि पंजाब पुलिस दी काउंटर इंटैलीजेंस शाखा च तैनात इंस्पैक्टर नूं उस वल्लों लिजाई जा रही खेप बारे खुफिया सूत्रां तों मिली जानकारी दे आधार ते रोकिया गया।
4: ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ I-20 ਸੀ ਉਹਦੇ 3 ਕਿਲੋ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਵਨ ਤੇ 6 ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 4 ਹੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 17 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। 1 I-20 ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
0: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ EPFO ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ 3 ਰੋਜ਼ਾ EPFO ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਇਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦਾ ਅੱਜ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖੇਡ ਮਹਾਂਕੁੰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਲਵਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ PF ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ

0: ਸਰੋਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।
1: बापू का घर घर पहुंचे संदेश, स्वच्छ और सुंदर हो अपना देश।
0: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। श्रोते हुण तुसी सुनोगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑर्गन इंडिया।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं AIR
0: FM
2: और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार का।
3: Brought to you by TVS Credit, easy loans for all your needs.

0: अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूँ। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है जो अंगदान, उत्तक दान और देह दान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
2: दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी को लेकर। आज हमारे साथ इंदौर का एक ऐसा परिवार मौजूद है जिनके बेटे का जो अंगदान हुआ वो ऐसा कहा जाता है कि मध्य भारत का पहला अंगदान हुआ था। आज हमारे साथ मयंक, जिसके अंगों का दान हुआ, उसके माता और पिता मौजूद हैं। आज हम उन्हीं से इस बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतने टाइम पहले सन 2000 में, जब अंगदान के ऊपर जागरूकता बहुत कम थी और बहुत कम हॉस्पिटल्स में अंग प्रत्यारोपण जैसी जटिल सर्जरी होती थी, उस टाइम पर इन्होंने कैसे अपने मयंक को एक नई जिंदगी दी। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं श्री दिलीप मेहता जी से और उनकी माता जी डॉक्टर संगीता मेहता जी से। नमस्ते दिलीप जी, नमस्ते संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। तो आप शुरू से बताइए, मयंक का नेचर कैसा था?
3: मयंक बहुत मेधावी और बुद्धिमान विद्यार्थी था। स्वभाव से बहुत मस्खरा था, क्रिकेट का बहुत शौकीन था, उसमें टीम भावना, लीडर की भावना बहुत ज्यादा थी। इसी तरह वो घर में भी सबका बहुत ध्यान रखता था, बहुत बहादुर था वो। महावीर जयंती के दिन उसका जन्म हुआ था। वो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर बिल्कुल खरा उतरता था।
2: अंगदान पर कैसे बात पहुंची दिलीप जी?
4: मयंक जो कि हमारा एकमात्र पुत्र था, केवल 14 वर्ष का था और वह अपनी नानी के साथ यात्रा पे गया था, तो 22 अप्रैल को उसका जन्मदिन हमने मनाया यहाँ पर। और फिर वो 22 तारीख को तो जब वो रवाना हुए यहाँ पे, तो और उसके बाद वो अपने गंतव्य पे पहुँचा और वहाँ से 65 किलोमीटर दूर ही वह उनकी गाड़ी घटना स्थल से नीचे गिर गई गड्ढे में और एक्सीडेंट हो गया, जिसमें परिवार के सभी लोगों को चोट आई, किंतु मयंक को मस्तिष्क में चोट थी, शरीर पर कहीं पे भी चोट नहीं। और उसे निश्चित रूप से वहाँ से लाने के बाद में लगभग सुबह सुबह या वहाँ से इंदौर लेके आए ग्रामीणों की मदद से और उन सब की मदद से, और यहाँ सुयश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और जब हमें सूचना पहुँची कि भाई परिवारजन का एक्सीडेंट हो गया है, मयंक का भी एक्सीडेंट हो गया है, हम बहुत ही घबराए हुए। जब हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ स्थिति बड़ी विकट थी कि हम हमारे बेटे को देखें या इनकी माता जी को देखें या इनके भाई को देखें, तो बहुत ही गंभीर समस्या थी, जबकि परिवार के काफी लोग को चोट पहुंची थी, लेकिन बाकी सब तो अच्छी अवस्था में थे, यानी बातचीत करने की अवस्था में थे, लेकिन मयंक जो है बातचीत करने की अवस्था में नहीं था, क्योंकि उसके सिर में चोट लगी थी। तो हमारा निश्चित रूप से उसकी तरफ ध्यान अधिक गया, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन वगैरह करने में काफी समय व्यतीत हुआ और उसकी ट्रीटमेंट भी उस समय तक शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए, धीरे धीरे निश्चित रूप से वो डिटोरिएट होने लगा। तो इस बीच डॉक्टर प्रदीप सालगिया, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं, वो आए,
2: बहुत वरिष्ठ चिकित्सक,
4: इंदौर के जाने माने चिकित्सक हैं, उन्होंने भी देखा, और भी हमारे जो परिचित डॉक्टर्स थे, जिन जिनको भी मालूम पड़ा, उन सब ने हमको सहयोग करके और उन्होंने जो भी नेक सलाह हो सकती थी वो दी। और ऐसे समय में डॉक्टर प्रदीप सालगिया, जो कि अनुभवी डॉक्टर हैं, और उनकी वाइफ डॉक्टर अल्पना सालगिया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है, तो उन्होंने आपस में कंसल्ट करके ये निर्णय पे पहुंचे कि यदि अगर स्थिति खराब होती है तो क्या इस फैमिली से चर्चा करके कुछ इसमें अंगदान के प्रति जागरूक किया जा सकता है। मैं रक्तदान के प्रति हमेशा ही जागरूक रहता,

0: तो रक्तदान के प्रति मुझे जानकारी थी, अभी तक तो मैंने केवल मृत्यु के बारे में सुना था। ये मस्तिष्क मृत्यु क्या होती है ये मैंने उस दिन पहली बार जाना, पहली बार सुना। और जब कुछ हमारे चिकित्सकों ने हमारे कुछ साथियों से सलाह मशविरा किया, उन सब ने मिलके हमें ढाढ़स बंधाते हुए हमको थोड़ा सा हल्का करके और हमसे पूछा कि भाई मयंक की स्थिति विकट है और क्या अपन अंगदान के करना चाहेंगे, और इसका इस प्रकार से इस सिस्टम है, मस्तिष्क मृत्यु होती है उसी दरमियान ये निर्णय लेना पड़ता है। निश्चित ही ये निर्णय हमारे लिए सोच में भी कठिन होता है, और कभी हमने मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ऐसा सुनने में ही नहीं आया था कि इस प्रकार से होता है। पर चूंकि हमारी भावना दान की शुरू से ही रही, हम जैन धर्म में विश्वास रखते हैं कि भाई हमारा यदि अगर हम समाज को कुछ न कुछ देना चाहिए, तो ये भावना शायद उस समय ईश्वर की कृपा से बलवती हुई और मेरी श्रीमती जी से भी पूछा गया, मुझसे भी पूछा गया, तो हम दोनों की एक ही स्वर में अलग अलग स्थानों पर एक ही स्वर में हमारी तरफ से ये कंसेंट गई कि भाई यदि अगर इसकी विकट परिस्थिति में किसी और का भला हो सकता है तो हम इसके अंगदान के लिए अपनी सहर्ष स्वीकृति देते हैं।
1: आपने तो समझ लिया इस चीज को, लेकिन आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी, आपके जो एल्डर्स थे, आपके जो बड़े बूढ़े थे?
2: ताऊ जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन दादी जी का थोड़ा सा मन असमंजस में था। जाते समय जरूर कुछ दबी जबान में मेरे मामा जी और मामी जी, उनका कहना था कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, पर चूंकि हमारे परिवार जनों की स्वीकृति थी इसलिए उसमें इतनी बाधा नहीं आई।
1: जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, डॉक्टर ने समझाया कि अब कोई मिरेकल नहीं हो सकता, तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ये सही बात है। ब्रेन डेड के बाद आज तक कोई इंसान वापस नहीं आया है। कई बार लोग कोमा और ब्रेन डेथ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि पेशेंट कोमा में है और शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोमा में जो पेशेंट है वो अलाइव रहता है, जिंदा रहता है, लेकिन ब्रेन डेथ की स्थिति में उसका ब्रेन पूरी तरह से मर चुका होता है, और हम जो भी हैं अपने ब्रेन की वजह से ही हैं। दिलीप जी, संगीता जी, आपने बताया कि जो मयंक था जब उसके अंगदान हुए तो कितने लोगों को एक नई जिंदगी मिली, कितने उसके ऑर्गन्स या टिश्यूज डोनेट हुए?
0: सामान्य जब ऑर्गन डोनेट हुए थे हम उस परिवार को नहीं जाने, क्योंकि चौथराम में ये सुविधा है और वो परिवार भी वहीं वो ले रहा था, तो उत्सुकतावश उस परिवार को भी ये जानने की इच्छा थी कि भाई इसके माता पिता को, तो उनकी जिजीविषा हमको जानने की ज्यादा थी कि भाई इस परिवार ने इतनी हिम्मत की है कि हमारे बच्चे को जीवन मिल रहा है। हमको डॉक्टरों ने नहीं बताया कि भाई किसको डोनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, और हमारे ही उसमें इतने बिजी थे दुख में इतने कि हमने ये ज्यादा समझने का प्रयास भी नहीं किया। और इसमें दो लोगों को किडनी दी गई थी, तो दूसरे परिवार का एक ऐसा मिरेकल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहले परिवार को तो सेम टाइम में किडनी ट्रांसप्लांट कर दी गई थी, और दूसरे के कुछ टिश्यूज में कुछ समय लग रहा है या कुछ वो देर से आए होंगे तो थोड़ा विलंब से किडनी लगी होगी या जो भी डॉक्टर्स प्रक्रिया रही होगी, तो वो दूसरे परिवार को और ट्रांसप्लांट होने के बाद भी यूरिन पास नहीं हो रही। अब जब यूरिन पास नहीं हो रही थी और उसको कठिनाई आ रही थी, तो उसमें उनको ये डर था कि ये जो हुआ है ये कहीं फेल ना हो जाए
1: जी।
0: और निश्चित रूप से तो वो परिवार, दूसरा परिवार हमसे हमारे दुख में सहभागी बनकर मिलने के लिए आया, और हम पहचान भी नहीं पाए कि भाई ये कौन परिवार है
1: जी।
0: लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि भाई ये ऐसा है कि आपका धन्यवाद और ये जो है हमारे इस प्रकार का जीवन मिला है, और उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई आपके यदि अगर मयंक का फोटो यदि अगर हमें दे दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और उन्होंने हमसे हमारे बिटिया बिटिया से फोटो ले लिया और कहा कि भी निवेदन किया कि भाई हम इसके हमारे पास में रखना चाहते हैं, और हम उसको चले गए। अब ये उन्होंने

0: ईश्वर का धन्यवाद कहें, उन्होंने उस फोटो को रखकर हॉस्पिटल ले जाकर और उसके सामने अगरबत्ती जलाई और उससे निवेदन किया,
1: प्रार्थना की कि अब हमारे बेटे की जिंदगी आपके हाथ में है, और तुरंत अस्पताल से फोन आ गया कि उसको यूरिन पास हुई।
0: तो ये ईश्वर का मिरेकल कह सकते हैं, प्रकृति का उपहार कह सकते हैं कि प्रकृति का उपहार उसको मिलना था और ये सब कार्य होना था। अब आपने और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा भी परिवार वालों से कैसे मिले, तो दूसरा पहली किडनी अशोक मालू को लगी थी, तो वो पूरा परिवार,
1: वो परिवार आज तक हम लोगों के साथ उसी तरह संबंध निभाता है कि हमको कभी भी हमारे पुत्र की कमी महसूस नहीं हो। उनके परिवार का कोई भी आयोजन हमारे बिना पूरा नहीं होता। उन दोनों परिवारों ने जो अपने संस्थान बनाए, जो दुकानें खोली, उन पर मयंक का ही उन्होंने नामकरण किया। परिवार भावना का तो बहुत विकास होता, और शुभारंभ भी उन्होंने हमारे हाथों से ही करवाया।
2: संगीता जी और दिलीप जी, अगर आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को आप कोई संदेश देना चाहते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर दे सकते हैं।
1: हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, जैसे कहते हैं परोपकारार्थम इदम शरीरम, तो हमको अपने शरीर से या कभी ऐसा मौका मिले तो जरूर अंगदान के रूप में एक नया जीवन देना चाहिए, क्योंकि ये अंग प्रकृति दत्त हैं और ये कहीं किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए किसी जाते हुए जीवन की रक्षा हमको अंगों को दे करके जरूर करना चाहिए।
0: जागरूकता हमें रखना चाहिए, और जागरूकता ही समाज को कुछ दे सकती है। और किडनी दान, अंग दान, आजकल तो लीवर दान होने लगे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगे हैं। 20 साल पहले ये सुविधा नहीं थी, तो इस अवेयरनेस को बनाए रखने के लिए हमने उस समय एक मयंक नामक पुस्तक भी निकाली थी, ताकि लोग उन जब हमसे पूछते थे और हमारी भावना इतनी बलवती नहीं हो पाती थी कि हम उसका आंसर दे सकें, तो हमने उस जागरूकता को बनाए रखने के लिए मयंक के नाम से एक पुस्तक निकाली थी, जो कि बहुत लोगों को फायदा किया उसने।
2: दोस्तों, ये थी मयंक की कहानी। जैसा कि आपने सुना कि ये बहुत ही एक भावुक कहानी थी, 14 साल के मयंक की एक दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद उसके अंगों का दान किया गया, 6 लोगों को जिंदगी मिली। दोस्तों, हम हमेशा आपके सामने ऐसी प्रेरणा से भरी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आज का शो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।
3: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
4: दोस्तों, अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं, या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।
5: Brought to you by TVS Credit. Easy loans for all your needs.

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: हुण तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑर्गन इंडिया, FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है, ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना, समझदार वीरे ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: ऐसी अनमोल यादें

0: विविध भारती के विशेष जयमाला कार्यक्रम में फिल्म संसार की तमाम जानी मानी हस्तियों ने अपनी बातें कही हैं। हमारा संग्रहालय बहुत ही समृद्ध है और इसमें है फिल्म संसार के कुछ महान कलाकारों की रिकॉर्डिंग्स, जिन्होंने फौजी साथियों से अपनी बातें कही हैं, अपने जीवन और अपने काम के बारे में बताया है। आज विशेष जयमाला कार्यक्रम में गूंजेगी आवाज स्वर कोकिला की। जी हां, लता मंगेशकर की आवाज आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में। बरसों पहले उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो आकर फौजी साथियों से अपनी बातें कही थीं। ये अनमोल कार्यक्रम आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं अपने संग्रहालय से निकालकर। तो आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर द्वारा प्रस्तुत है।
1: फौजी भाइयों की सेवा में मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पिछले कई सालों से मैंने बहुत से गीत गाए हैं, सुने हैं और सुनाए हैं, लेकिन आज जब मेरे सामने ये बात आई कि मैं अपनी पसंद के कुछ गीत आपको सुनवाऊं, तो एक अजीब उलझन सी मुझे हुई। दरअसल आज पहली बार मुझे उन गीतों को आलोचक की दृष्टि से देखना पड़ा है। खैर, मैंने कुछ गाने अपने गाए हुए और कुछ औरों के गाए हुए आपको सुनवाने के लिए छांट लिए हैं, और मेरी पसंद आपको भी पसंद आई तो मैं अपने इस प्रयास को सफल समझूंगी।

ये भजन मैंने फिल्म हम दोनों में गाया था। साहिर लुधियानवी ने लिखा और जयदेव ने इसकी धुन बनाई है। इस भजन को खासकर सवेरे या पहर रात गए अगर सुना जाए तो एक अजीब सा सुकून मिलता है दिल को। शायद आपने भी इस बात का अनुभव किया हो। और भगवान के नाम से तो वैसे भी शांति और सुकून मिलता ही है। इस बात को मैंने उस दिन और भी ज़्यादा महसूस किया जिस दिन ये भजन मैंने गाया था। भक्त कबीर ने कहा है, गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। और अब मुझे बरबस ही याद आ रहे हैं स्वर्गीय श्री केएल सहगल। वैसे तो उनसे सीखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन उन्हीं के गाए हुए गीतों को सुन सुनकर मेरे दिल में सुगम संगीत गाने की इच्छा हुई और इस क्षेत्र में मैं उन्हीं को गुरु मानती हूँ। मेरे पिताजी श्री दीनानाथ मंगेशकर, जो खुद अपने ज़माने के नामी कलाकार थे, सहगल साहब की गायकी को बहुत पसंद करते थे और मुझे अक्सर कहा करते थे कि मैं सहगल साहब का कोई गीत उन्हें सुनाऊं। बोलों की अदायगी जितनी समझदारी से सहगल साहब करते थे शायद ही कभी कोई कर सकेगा। मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा है मेरी सफलता का राज, और मैंने हमेशा एक ही बात महसूस की है कि मैं गीत के भावों को पूरी तरह समझने की कोशिश करती हूँ, उन्हें दिल में गहरा उतार लेती हूँ और फिर संगीत निर्देशक की दी हुई धुन भी मेरे मन में बार बार गूंजती रहती है। गीत के भाव के हिसाब से कभी उसमें कुछ घटाकर देखती हूँ, कभी बढ़ाकर, और जब गाती हूँ तो दिल से गाती हूँ, सिर्फ गले से नहीं।

अब सहगल साहब का गाया हुआ एक गीत पेश करती हूँ, सोजा राजकुमारी सोजा। लेकिन पहले सुनिए कि मैं किस तरह उनकी नकल करने की कोशिश किया करती थी।

आपको शायद याद होगा, फिल्म परख में एक गीत था, ओ सजना बरखा बहार आई। दरअसल उससे पहले मैंने सलील चौधरी का एक बंगला गीत गाया था जो कि काफ़ी पसंद किया गया। बाद में अपनी उसी तर्ज पर उन्होंने शैलेंद्र से ये गीत लिखवाया। मैंने वैसे हिंदी के अलावा भी कई भारतीय भाषाओं के गीत गाए हैं। मराठी तो मेरी मातृभाषा है ही, लेकिन गुजराती, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं के गीत भी मैं गा चुकी हूँ। अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि मैं दूसरी भाषाओं के गीत कैसे गा लेती हूँ। जवाब बिल्कुल सीधा है, सभी भारतीय भाषाओं की आत्मा एक है, मानव भावनाएं भी एक हैं। इस बात को समझकर अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो भाषा का भेद कुछ भी नहीं रह जाता, और भारतीय भाषाएं सीखने का मुझे शौक भी है। हाँ, तो सलील चौधरी के बंगला गीत की बात कर रही थी मैं। लीजिए, पहले उसी की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ और फिर सुनिएगा उसका हिंदी रूपांतर।

गाइड में बर्मन दादा का गाया हुआ एक गीत अब मैं पेश करती हूँ। बर्मन दादा की गायकी सबसे अलग है, सबसे निराली। बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से गाते हैं वो, और लोक संगीत की छाया जो होती है उनके गाने में, उससे गीत की मिठास और बढ़ जाती है।

0: कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा मुसाफिर जाएगा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप,
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
4: इसे प्रस्तुत किया है जानी मानी पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने।
1: अगला रिकॉर्ड मन्ना डे ने गाया है और बर्मन साहब ने इसकी धुन राग आहिर भैरव के आधार पर बनाई है। बोल शैलेंद्र के हैं और फिल्म है मेरी सूरत तेरी आंखें। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुहे नींद ना आई।

मैंने कई बार देखा है कि कभी तो जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड किए हुए गीत भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं और कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी गीत से संतोष नहीं होता। कई साल पहले की बात है, मैं कोल्हापुर से लौट कर आई तो पता लगा कि

शाह साहब ने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाया है। मैं उन्हें देखने गई तो वहीं उन्होंने बताया कि फिल्म अमर के लिए एक गीत कल ही रिकॉर्ड करना है। शकील साहब ने बोल भी लिखे हैं। नौशाद साहब ने उसी हालत में मुझे ट्यून भी सुनाई और दूसरे ही दिन वो गीत जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड भी कर दिया गया। लेकिन आज भी वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है।

जाने वाले से मुलाकात न होने पाई। और इधर फिल्म बंदिनी में मुकेश का कहना है कि ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। जाने वाले लौट के आते हैं या नहीं आते, ये बात तो बहस की है, और बहस की जरूरत ना आपको है ना मुझे। लीजिए गीत सुनिए, रचना शैलेंद्र की है और संगीतकार हैं बर्मन दादा।

0: सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया है जानी मानी पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने। यह कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उसदे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
5: को बिल्कुल मानती हूँ, बहुत से दर्द भरे मीठे गीतों में से एक ये भी है जो फिल्म जहां आरा में तलत महमूद ने गाया था। राजेंद्र कृष्ण के शब्दों को मदन मोहन ने संगीत से सजाया है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है।

कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। फिल्म हम दोनों में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गज़ल के बोल और गाने का अंदाज़ दोनों ही अच्छे बन पड़े।

वैसे कुछ वर्षों से फिल्मी कहानियों पर पश्चिमी प्रभाव की वजह से कहिए या संगीत में नयापन लाने की गरज से काफी फिल्मी गीतों में पश्चिमी रंग ढंग दिखाई देने लगा है। इसी तरह का एक गीत मैं आपको फिल्म मेरे सनम का सुनवाती हूँ, जो कि मेरी बहन आशा भोसले ने ओपी नैयर के निर्देशन में गाया है।

0: अच्छा तो मेरे फौजी भाइयों, मेरे प्रस्तुत किए हुए गीत आपको पसंद आए होंगे। इस आशा के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद।
1: ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया फिल्म संसार की सुप्रसिद्ध गायिका स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से निकालकर आपके लिए प्रस्तुत की। अब आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ।

0: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
1: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
0: ये आकाशवाणी है।
1: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
0: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
1: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
0: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
1: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
0: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
1: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
0: ये आकाशवाणी है,
2: आकाशवाणी है। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: श्रोताओं, हवा महल में श्रृंखला सुनो कहानी के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आप सुनेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी गूंगी। आज आप इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग सुनेंगे। वाचन स्वर शिफाली कपूर।

अभी तक आपने सुना सुभाषिणी, जिसे घर में सब सुबह कहकर बुलाते हैं। जन्म से गूंगी सुबह अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन उसकी आंखों की भाषा को कोई नहीं समझता। सरस्वती और पार्वती, इन दोनों गायों के सिवा सुबह की कोई सखी, कोई सहेली नहीं है। एक बकरी और बिल्ली के एक बच्चे से सुबह को स्नेह है। सुबह की भेंट होती है गुसाइयों के लड़के प्रताप से। अब आगे। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वो है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी से कट जाता है। तीसरे पहर सरिता के तीर पर बहुधा वो इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिणी से उसकी भेंट हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेयस्कर माना जाता है। अतः प्रताप सुभाषिणी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिणी को सुबह कहते, किंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर सुबह को सू कहकर पुकारता। सुभाषिणी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वो अपने हाथ से लगाकर लाती और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वो प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे। उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार वो ये बता दे कि संसार में वो भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं, लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और वो न कुछ कर ही सकती थी। तब वो मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिससे वो जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे, अच्छा सू में ये करामात, मुझे क्या पता था। मान लो सुभाषिणी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रासाद में स्वर्ण जड़ित शैया पर कौन बैठी है और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता, अरे ये तो अपने वाणीकंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है, सू, मेरी सू, आज मणियों से जटित गंभीर निस्तब्ध पातालपुरी की एकमात्र जलपरी बनी बैठी है। तो क्या ये बात हो ही नहीं सकती, क्या ये नितांत असंभव ही है।

वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी सु प्रजा शून्य पातालपुरी के घराने में जन्म न लेकर वाणी कंठ के घर पैदा हुई है और इसीलिए वो आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। सुभाषिणी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे मानो वो अपने आप को अनुभव कर रही है, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिवर्चनीय चेतना शक्ति से भर भर देता है। अब मानो वो अपने आप को देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। पूर्णिमा की गाढ़ी रात्रि में उसने एक दिन धीरे से कक्ष के झरोखे को खोलकर भयत्रस्तावस्था में मुंह निकाल कर बाहर की ओर देखा। देखा कि संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी हुई जाग रही है, वो भी यौवन के उन्माद से, आनंद से, विषाद से, असीम नीरवता की अंतिम परिधि तक, यहां तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है। एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल रहा है, मानो इस स्थिर निस्तब्ध प्रकृति के एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो। हवा महल में श्रृंखला सुनो कहानी के अंतर्गत आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं, उधर गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं। वाणीकंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते आराम से हैं और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशविरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ गांव से बाहर परदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चले चलें। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगीं। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतःकरण अश्रुओं की भाप से ऊपर तक भर आया। भावी आशंका से भयभीत होकर वो कुछ दिनों में मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती, पर वे उसे कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे। इसी बीच में एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रिसु, मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है, तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है, देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वो जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरणी जैसे शिकारी की ओर ताकती और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वो वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है, सुबह ग्वाल घर में अपनी चिर संगनियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बाहें डालकर वो अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी। उसके दोनों नेत्र अश्रुओं के बांध को न रोक सके। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई, मानो वो अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के लिए विदा मत कर मां, मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख, कहीं मत विदा कर। कलकत्ते के एक किराए के मकान में एक

दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कसकर उसका जूड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया और आभूषणों से लादकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुबह के दोनों नेत्र अश्रुओं से गीले थे, नेत्र कहीं सूख न जाएं, इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, पर अश्रुओं ने फटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्रों के साथ वो कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के पशुओं को देखने आए हों। अंदर से बहुत टाट फटकार बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है, और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछोह की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम वो आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए, और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। सुबह का पति पछां की ओर नौकरी करता है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वो पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं, उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थीं, किंतु कोई उसे समझ न सका। अब वो चारों ओर निहारती रहती है, उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहां दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनित हो उठा, और सृष्टिकर्ता के सिवा और कोई उसे सुन ही न सका। अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया।

0: श्रोताओं, हवा महल में श्रृंखला सुनो कहानी के अंतर्गत आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी गूंगी। आज आपने इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग सुना। वाचन स्वर शेफाली कपूर, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सुनो कहानी।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीतम का संगीत है ये, कौसर मुनीर के बोल, आवाज केके की, और फिल्म का नाम बजरंगी भाईजान।

कार्यक्रम का अगला गीत कुमार का लिखा हुआ, उजैर जायसवाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। गाने वाले कलाकार हैं तुलसी कुमार, आलम खान, ऐश्वर्या मजूमदार और डब्बू मलिक। फिल्म का नाम है एक पहेली लीला।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती।

फिल्म हीरो का गीत अभी आप सुन रहे थे। युगल स्वर पलक मुछल और अमाल मलिक के थे। गीत को कुमार ने लिखा और धुन बनाई अमाल मलिक ने ही।

गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह आवाज अंकित तिवारी की फिल्म का नाम रॉय, गीत को अभिन्द्र कुमार उपाध्याय ने लिखा है और धुन अंकित तिवारी की ही है।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
4: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
3: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इंदीप बख्शी और सोनी बी की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड का गाना।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी। मांगा जो उसने
0: एक सितारा। और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थ

0: करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
1: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
2: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
3: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
1: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
5: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
6: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी

0: आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
1: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रात्रि के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है लाल पत्थर, गीतकार देव कोहली, संगीत

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने फिल्म लाल पत्थर का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम आन मिलो सजना।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन। एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।
3: कार्यक्रम का अगला गीत साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीत पत्ते किया हुआ सुनिए। स्वर मोहम्मद रफी का और फिल्म का नाम गजल।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है सफर, स्वर किशोर कुमार का, गीत रचना इंदिवर की है और धुन कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था सफर। आइए सुनते हैं फिल्म महाराजा का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का फिल्म महाराजा के लिए।
1: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।
3: कैसे जीत

0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दोस्त। गीत आनंद बख्शी का था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
6: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: से बीमारों का इलाज भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
0: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललिता मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलियाँ, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी। सन 1952 में आई आनंद।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की श

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्यार सच्चा है गर तो महकेगा चंदन की तरह।

वरना सारी रात तुम्हारी आंखों में गुजर जाएगी। वो लम्हात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ कह न सके हम, तकदीर के हाथों लुटते रहे, अश्क आंखों से ही बस बहते रहे, हम बुनते रहे ख्वाबों को अक्सर, और एक सिरे पे तन्हा रहे हम, वो दूजा सिरा ढूंढ न पाए।

लोगों ने बहुत समझाया हमको, ये इश्क नहीं आसा, तकदीर में जो होगा वो मिलेगा ही तुझे एक दिन, मगर हम जान की बाजी लगा बैठे, तमन्ना उसे पाने की, उसे अपना बनाने की जो कसम खा बैठे।

ख्यालों में उसी के हम करवटें बदलते रहे, वो नहीं थे पास मगर उन्हीं को याद करते रहे। चाहत भरे दो दिलों की दास्तां चुपके चुपके असर करने लगी, रह रहकर धड़कनों में बस एक ही पुकार उठ

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। वो शाम आई, वो रात आई, तकदीर इतनी बेरहम भी न थी। ये हमने उस रोज़ जाना, आसमां पे चांद अपने पूरे शबाब पर था। वो मेरे सामने चांदनी बनकर इस तरह आई। उस रात की तन्हाई में दिल मचल उठा और मोहब्बत भरे तराने ओठों पे सज गए।

जब सामने आ ही गए वो, तकदीर मेरी हंसी पड़ी। क्या खूब दीवाने होते हैं, नज़रों में मोहब्बत के फूल खिल उठते हैं, सांसें महक उठती हैं, फिजाओं में रंग बिखर गए और आपस में शिकायतें भी तो यही करने लगे।

क्या कहें, राज दिल दीवानों से छुपाया न गया। मोहब्बत की आग ही कुछ ऐसी होती है कि तकदीर भी पल में बदल जाती है। प्यार के आगे वो मुस्कुरा के झुक जाती है। प्यार परवान चढ़ता है जब दो दिलों की बातें आंखों ही आंखों में होने लग जाती हैं।

मौसम कितना भी सुहाना हो या हो रातें सुहानी, बस वो तुम्हारी यादें, वो प्यार भरी बातें, वो तुम्हारी जुल्फों का लहराना मुझे मेरी नींदों से जुदा कर जाता है। क्या कहूँ मैं, किससे कहूँ अपने दिल का हाल, उस पर से ये रात का आलम भी कुछ कम कहर नहीं ढा रहा।

छाया गीत में मोहब्बत भरे तराने आपके दिलों के बेहद करीब छोड़कर जाती हूँ, शायद ख्वाबों में मुलाकात हो जाए तो मंजरी वर्मा का नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਲਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: हुण तुसी सुनोगे निंजा दी आवाज़ च एक गीत।

0: आपका दोस्त यूनुस।
1: न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और

0: आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FMX 7.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁ